FM बैंड 7.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने

0: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं संवित स्वर में गाई इस

संवित स्वर में अभी आपने सुनी है मातृवंदना और भक्ति संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हो। अब आपको हम सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में मीराबाई के ये भक्ति।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सखियों को, रचना मीराबाई की थी। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें अब लीजिए सुनिए पंडित संजीव अभ्यंकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: पंडित संजीव अभ्यंकर और साथियों के गाए इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:23 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। हमारा चिंतन कार्यक्रम केंद्रित है काल करे सो आज कर पे। आलेख सुशील कश्यप का है और वाचन किया है आभा गुप्ता ने।
1: किताबों में लिखी बातें पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं। उन्हीं बातों को जब हम जीवन में क्रियान्वित करते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी चेतना अपने पूरे संस्कारों के साथ अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। काल करे सो आज कर, अगर हम इन 5 शब्दों को भी समझ सकें तो शायद जीवन मृत्यु के रहस्य को भी समझने में कठिनाई न हो। इससे आगे के शब्द भी तभी समझ में आएंगे जब हम उन्हें यथार्थ में उतार लेंगे। प्रलय तो पल पल में हो ही रही है, बल्कि लयबद्ध हो रही है। वक्त गुजरता रहता है। आप सोचें कि ये वक्त अब मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा जो गुजर रहा है। ये कल्पना नहीं, सत्य है। सत्य का दर्शन करना और उसकी कल्पना करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। हमें पता है कि कल कभी न आया है न आएगा। कल तो स्वयं काल में निहित है। भूत, वर्तमान और भविष्य, बस इतनी सी ही तो कहानी है। जीवन चला, दौड़ा, थका, हारा और फिर सो गया, फिर कहीं कभी किसी और रूप में बना और फिर चला। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। रुकता नहीं है तो केवल समय, और शायद इसीलिए उसे काल कहा जाता है। हमें भविष्य की बात करना अपने को धोखा देने जैसा है। यह जानकर भी कि अगले पल का हमें जरा सा भी ज्ञान नहीं है, हम कैसे भविष्य की योजना बना सकते हैं। फिर विचार आता है कि यदि सभी संसार के लोग ऐसा सोचेंगे तो सृष्टि स्थिर हो जाएगी, दुनिया रुक जाएगी। खुदा की बात कुछ और है गालिब, जन्नत की बात अफवाह सी नजर आती है। अरे जनाब, जब हम वर्तमान को ही नहीं पकड़ सके तो भविष्य की नींव

0: कैसे रखेंगे? ये शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं है, ये नकारात्मक सोच भी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य, सात्विक और परम कल्याणकारी सोच है। अगर पल में प्रलय होगी तो आज जो हम करना चाहते हैं उसको न करने का अफसोस जीवन भर हमारा पीछा करता रहेगा। इंसान आशावादी होता है। जिस नश्वरता को इंसान अपना मान बैठा है वह उसकी भूल है। वह मैं और मैं करता हुआ एक दिन इस मैं से ही दूर हो जाता है। हम आज, अभी और इसी वक्त अपने शरीर, मन, बुद्धि और चेतना से कर सकते हैं, वही शाश्वत है, वही सुख है और वही संतुष्टि है। हम भविष्य के लिए कल्पनाओं के महल बनाएं अवश्य, लेकिन यथार्थ धरातल पर, क्योंकि नींव जितनी सशक्त होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये शब्द हर पल हमारे चारों तरफ चरितार्थ हो रहे हैं और एक हम है जो क्षणिक वैराग्य में डूबकर फिर अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं। अगर कबीर ने भविष्य की सत्ता को नकारा तो उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि वह वर्तमान में जीवन की उस दौलत को लुटाने में लग गए थे जो उनके पास अनमोल थी, और शायद इसी कारण उनकी वह बात हम आज भी याद रख रहे हैं। शरीर के सितार में काल के स्वर को उन्होंने समझ लिया था। जीवन के साज को मृत्यु के गीत को बजाने के लिए तैयार कर लिया था। तब उन्होंने कहा था कि जो करना है अभी इसी वक्त करो, नहीं तो प्रलय तो निश्चित है, क्योंकि पल पल वह सिर्फ और सिर्फ हमारा इंतजार कर रही है। जीवन प्रारंभ होते ही पूरी गति से दौड़ने लगता है मृत्यु को गले लगाने को। क्या ऐसा सच्चा प्रेम कहीं और है? फिर हम क्यों इस प्रेम में बाधा बने? हम क्यों भूत और भविष्य की बात करें? अगर हम बात ही करें तो उस क्षण की करें जब हम सृष्टि और प्रलय के झंझटों से ही दूर हो जाएं, हम अपने मूल अस्तित्व में समा जाएं, हम जीवन मृत्यु के चक्र से परे चले जाएं। अगर हम बात करें तो अपने मूल स्वरूप में लौटने की बात करें।
1: काल करे सो आज कर, इस विषय पर केंद्रित था हमारा आज का कार्यक्रम चिंतन। आलेख सुशील कश्यप का था और वचन के था सुश्री आभा गुप्ता ने। आकाशवाणी शिवपुरी से अब लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर अनुराधा पॉड।

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काक भुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो

0: श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि सामायिकी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गर्मियों में दुधारू पशुओं की उचित देखभाल। जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर एस पेसे।
1: नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और गर्मियों का जब प्रवेश होता है तो पशुधन जो है हमारा इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव असर जो पड़ता है जो खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। तो दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन लगातार और बढ़िया बना रहे, जो उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमारा दुधारू पशु चाहे गाय है चाहे भैंस है क्षमता के अनुसार भरपूर दुग्ध उत्पादन करता रहे। आप देखेंगे गर्मी और बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो लू का प्रकोप है लू का प्रकोप भी होगा, और ऐसे मौसम में दुग्ध उत्पादन और बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो जो हमारे दुधारू पशु हैं उनका प्रबंधन इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो दुधारू पशुओं का खासकर बदलते गर्मियों के मौसम में सबसे पहला जो प्रबंधन है वो आहार व्यवस्था का प्रबंधन होना चाहिए। आहार प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आहार एक महत्वपूर्ण घटक होता है दुधारू पशुओं के लिए, और दुधारू पशुओं की खिलाई पिलाई पर ही 70% खर्चा होता है। इसलिए आहार का हम अच्छी तरीके से प्रबंधन करके गर्मियों में भी उनसे उनकी क्षमता के अनुरूप अच्छा दुग्ध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो जरूरत है वो इस बात की है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं बदल रहा है मौसम बदल रहा है, तो उन्हें आगे भी संतुलित आहार अवश्य देते रहें। संतुलित आहार जब देंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छा लाभ मिलेगा। और संतुलित आहार में सबसे मोटी मोटी बात यह है कि जो हम आहार बनाते हैं और जो आहार खिलाते हैं उसमें रातव, जिसमें आपके गेहूँ जो जई का रातव हो वो 40 किलोग्राम हो, इसके अलावा खल हो हमारे पास चाहे मूंगफली की खल हो चाहे सरसों की खल हो, खल 35 किलोग्राम, चोकर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, और चोकर में दालों चने चुनी के छिलके ये आते हैं ये 20 किलोग्राम। इसके अलावा दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं वो विटामिन और खनिज लवण। तो ये विटामिन और खनिज लवण में ये 2 किलोग्राम अलग से,

0: चाहिए और 3 किलोग्राम साधारण नमक। इस तरीके से हम देखेंगे 40, 35, 20, 3 और 2, तो ये 100 किलोग्राम हमारा संतुलित आहार बन के तैयार हो जाता है। सारे चीज़ों को हम पिसवा कर एक जगह मिला देंगे तो ये 100 किलोग्राम संतुलित आहार हमारा बन जाएगा। और इसको हम अपने जो पशु हैं इस मौसम में उनको दुग्ध उत्पादन की क्षमता के आधार पर खिलाएं। जो हमारी भैंस है उसको 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम संतुलित आहार, यदि गाय है तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार। तो ये एक अनुपात है। यदि माना कि कोई भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो उसको 4 किलोग्राम संतुलित आहार दूध उत्पादन की चाहिए। इसके अलावा मेंटेनेंस राशन के रूप में यानी जीवन रक्षक आहार के रूप में 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त उसको और संतुलित आहार चाहिए। तो एक 10 लीटर दूध देने वाली भैंस को लगभग लगभग 5.5 किलोग्राम संतुलित आहार 24 घंटे के अंतर दोनों टाइम में जो सानी लगा के खिलाते हैं उसमें देना जरूरी है। गाय को थोड़ा कम कम कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और भैंस को 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाय के दूध में थोड़े पानी ज़्यादा होता है और वसा कम होती है और भैंस के दूध में वसा ज़्यादा होती है, इसलिए भैंस को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उसको थोड़ा ज़्यादा हमें जो है संतुलित आहार देना पड़ता है। और क्योंकि इस समय विशेष रूप से एक धानी सावधानी ये रखनी है कि जो भूसा आता है, क्योंकि ताजी भूसा होता है, तो भूसा जो है उसको एक डायरेक्ट हम अपने ताजी भूसे को एकदम डायरेक्ट अपने पशुओं को नहीं खिलाएं। सुबह शाम जो भूसे से सानी लगा रहे हैं उस भूसे को हल्का सा जैसे डलिया में ले रहे हैं तो डलिया भिगो लें, पानी को भूसे को एक बार पूरा भिगो के, या पानी भरा हुआ टंकी में तो टंकी में डलिया डुबो के ऊपर निकाल लें, तो जो भूसे की गर्मी है वो गर्मी हल्का शांत हो जाती है, कम हो जाती है, और उस भूसे में सानी लगाए खिलाएंगे तो पशु चाव से भी खाएगा और उसकी जो गर्मी का प्रकोप है भूसे के माध्यम से वो गर्मी का प्रकोप नहीं होगा। वरना क्या होता है, जब भूसा गर्म होता है तो पशु जो है पतले दस्त भी उसके कर देता है, तो ये उससे बचाव होगा। और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हम आहार प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो इसमें संतुलित हरे चारे के आहार प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। पशुओं से अच्छा दूध उत्पादन लेना, ज्यादा उत्पादन दूध उत्पादन लेना है तो उसको हरे चारे की भरपूर मात्रा देनी होगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो व्यवस्था है हमारे जो गर्मियों में दुधारू पशुओं को, क्योंकि हम जो चारा दाना खिलाते हैं और गर्मी में हम जो है पशुओं को पानी का जो है प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि संतुलित आहार में नमक का समावेश जरूर करें। जब पशु पर्याप्त मात्रा में नमक खाता है तो उसकी प्यास बढ़ती है, तो प्यास बढ़ती है तो इस समय दिन में कम से कम जो है 3 से 4 बार स्वच्छ और ताजी पानी अपने दुधारू पशुओं को 3 से 4 बार जरूर पानी पिलाएं। भले ही पशु नहीं पीता पर हमें 3 से 4 बार पानी उसको दिखाना है। एक तो पानी स्वच्छ हो और ताजी हो, ये पानी हम पिलाएं, तो जो हमारे ट्यूबवेल का है या हमारे जो हैंडपम्प का है या जो हमारे कुएं का पानी है उसको आप दिन में 3 से 4 बार आप पिलाएंगे तो भरपूर जब पानी पिएगा तो तब भी दूध उत्पादन होगा। और इससे प्रभाव क्या होगा कि जब पशु पर्याप्त मात्रा में पानी पिएगा तो जो लू का प्रकोप है, गर्मी का प्रकोप है
1: जी,
0: वो उससे उसका जो बचाव होगा।
2: गर्मियों में दुधारू पशुओं की उचित देखभाल, इस विषय पर जानकारी अभी आपको दे रहे थे डॉक्टर एस पी सिंह। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। ये समय है कार्यक्रम विवरण का, यानी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को जानने का। हम आपको बता दें आपसे बस थोड़ी सी देर बाद यानी प्रातः 6:55 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर लघुवार्ता होगी राष्ट्रीय एकता पर आधारित हिंदुस्तान हमारा। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम रोजाना आप सुना करते हैं प्रातः 7:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार शिवपुरी। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुबह सुनिएगा 8:30 पर और 10 बजे सुनेंगे आप जिले की चिट्ठी। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, इसमें कलाकार होंगे आज आभा खरे और दामोदर शर्मा। 9:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत होगा, इसमें श्रोताओं को सुनवाएंगे उन्हीं की फरमाइश पर कुछ फिल्मी गीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार होंगे अजीज नाजा, इनसे आप सुनेंगे कुछ कव्वालियां। सुबह 10:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल के।

हमारी दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आज दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम में आज की प्रस्तुति रहेगी जबलपुर केंद्र के। इसी प्रकार लोक संगीत और सुगम संगीत में भी आकाशवाणी केंद्र जबलपुर की प्रस्तुति रहेगी। हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युवाणी से। इसमें आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र जबलपुर की प्रस्तुति।

आज संध्या 7:21 पर हमारे केंद्र से सुनिएगा ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें चर्चाएं शामिल रहेंगी खेत बचाओ अभियान और दूसरी चर्चा रहेगी ऊर्जा का बेहतर विकल्प सौर ऊर्जा। प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे 7:30 पर किसान वाणी। इसमें एक भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण। वार्ताकार होंगे श्री शैलेंद्र सिंह घुरैया और इनसे बातचीत करेंगे SS चौधरी। रात्रि 8 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम श्रोताओं। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

0: पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में

0: एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। राष्ट्रीय एकता हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की महती विशेषता है। यहाँ विविध धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है इन समस्त विविधताओं के बीच एकता और सामंजस्य बनाए रखना। यह भाव हमारे देश की संस्कृति एवं विरासत को सुरक्षित रखने में मदद करता है। एकता व सामंजस्य एक ऐसी भावना है, एक ऐसी शक्ति है जो देश को मजबूती प्रदान करती है। यह विविधता वाली समाज अथवा राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के बीच अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो व्यक्तियों को सामान्य लक्ष्यों की ओर मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें शांति, सहयोग को बढ़ावा मिलता है। एकजुट राष्ट्र गरीबी, असमानता और संघर्ष जैसी चुनौतियों को बहुत ही प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। शिक्षा सम्मान और समझ के मूल्यों को विकसित करता है। यह एक ऐसी विविधतापूर्ण समाज में राष्ट्रीय एकता विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समुदायों के बीच अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा, समाज और हमारी आपसी समझ। राष्ट्रीय त्योहारों और इसको साझा इतिहास का उत्सव मनाने में भी नागरिकों के बीच, देशवासियों के बीच, हम सभी के बीच संबंधों को मजबूत कर सकती है। इसलिए हम सभी को राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल देना चाहिए। यह वह आधार होती है जिस पर एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना होती है जो हम सभी को साथ लेकर चलती है और हमारे देश को प्रगति और उन्नति के पथ पर पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास करती है और बढ़ाती है हमें इस ओर कि हम आगे बढ़ें, हमारा देश आगे बढ़े और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। ऐसी भावना होती है तो इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल देने की महती ज़रूरत होती है। हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे का जो पर्व त्यौहार है उनका मान सम्मान करना है और सबसे पहले जो हमारा हित है वो हमें समझना है कि हमारा जो हित है वो राष्ट्रहित होना चाहिए। राष्ट्रहित सर्वोपरि जब हम रखेंगे तो बहुत हद तक, जी हाँ बहुत हद तक हमारे देश का और हमारा विकास होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की स्थिरता और प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम सभी को अपने बीच अपनेपन और स्वीकृति की भावना को बढ़ावा देना है। इसलिए ध्यान रखना होगा हमें अपने आसपास का और हमारे बीच आपसी संबंधों का, और सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपने देश का। हमें ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं और राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल देना है, इसके लिए सभी कार्य करने हैं। इसके साथ ही विराम देते हैं आज की इस लघु वार्ता को। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता पर आधारित लघुवार्ता हिंदोस्तान हमारा, FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक,

0: संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजातीय समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी। साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता हूँ और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग 2 जो सड़कें की सौगात मिली, 2 परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
0: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालाकोड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लबफुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मीर तकी मीर की लिखी ये गजल, तर्ज बनाई है खयाम साहब ने और आवाज़ लता मंगेशकर की है। इसे हमने लिया है फिल्म

ये थे येसुदास और हेमलता। फिल्म चित्तौर से इसे हमने लिया था। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। इसमें आप लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। हसरा जयपुरी साहब ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। इसे हमने लिया है फिल्म।

0: फिल्म ब्रह्मचारी का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की, शब्द रचना हसरत जयपुरी साहब की और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। कुछ और गीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पश्चात।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आप लीजिए सुनिए, एक मुसाफिर है एक हसीना, इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और

एक मुसाफिर एक हसीना, इस फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। और अब लीजिए सुनिए मुकेश और कंचन को, इंदिवर का गीत है, कल्याण जी आनंद जी उड़ी की धुन है और इसे हमने लिया फिल्म धर्मात्मा से।

मुकेश और कंचन की गाय फिल्म धर्मात्मा के इस गीत के साथ है। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। प्रातः के 7:45 हुए हैं। आप लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम। नमस्कार।

हमारे सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो मित्र परवीन खान का हार्दिक अभिवादन। श्रोताओं, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हर्ष विषाद सुख दुख ये सब हमारे साथ चलते रहते हैं। ऐसे में हम एक दूसरे की भावनाओं को सुनते समझते हैं और कभी सुलझाने जैसा महान कार्य भी कर देते हैं, लेकिन ये तब होता है जबकि हम एक दूसरे को जानते हों या कोई हमारा मित्र अथवा परिचित या सगा संबंधी हो। दूसरे के दुख को महसूस करके उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखना, फिर उसे समझाना हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। कर्तव्य का निर्वहन करना हमारे मानवीय गुणों में से एक महान गुण है। किसी के प्रति दया करुणा और सहानुभूति का होना जहां हमें श्रेष्ठ मानवता की सीख देता है, वहीं समाज में परोपकार की भावना को बल देता है। मानवता हमें सिखाती है कि हम प्रत्येक प्राणी, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो या मानव, इन सभी के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखें। ये दोनों ऐसे मानवीय गुण हैं जो समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों और विसंगतियों को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब हम इसे प्रत्येक के मन मस्तिष्क में संपूर्ण प्राणी जगत के लिए दया और सहानुभूति होगी, तब समाज में हो रहे आज जो अत्याचार अपराध, अपने से बड़े और बुजुर्गों के प्रति कम होती मान मर्यादा की जो भावना है, बच्चियों लड़कियों और स्त्रियों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव, ये सब जो चलन में है वो होगा ही नहीं अगर हम सभी के हृदयों में दया और सहानुभूति जैसे महान गुण हों। वर्तमान परिवेश में मानवीय गुणों का गिरता स्तर दर्शाता है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी इन गुणों को, जो हमारे अंदर मानवीय गुण हैं, उनमें से कुछ एक को जागृत करने की, मन वचन और कर्म से परहित की भावना संजोने की, सुखद और स्वस्थ समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जबकि हमारे हृदय में समस्त प्राणियों के लिए दया हो, सहानुभूति हो, प्रेम हो और हम सभी उनके बारे में अच्छा करने का प्रयास करें और अच्छा करने के लिए सोचें। ऐसा हम सभी के दिलों में ये जो ऐसी भावना है वो रहनी चाहिए और संजी और सबरी रहना चाहिए और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों के प्रति जो असहाय हैं, उनके प्रति जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमें अगर ऐसी भावना भी हमारे अंदर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और ये सब ज़रूरी भी है एक मानव होने के नाते, क्योंकि संपूर्ण प्राणी जगत में मानव सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की। तो हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और अपने कर्तव्य जहाँ भी हम देखें उसका हमें पालन करना है और जहाँ तक हो सके उसका निर्वहन हमें करना चाहिए। अब कर्नाटक जाने वाले यात्रियों के लिए सीधे शिवपुरी से ट्रेन मिलेगी। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा प्रयाग से हुबली तक एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है जो शिवपुरी से होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 04113 शनिवार को प्रयाग से चलकर संध्या 4:30 बजे शिवपुरी पहुंचेगी और यही गाड़ी वापसी में गाड़ी संख्या 04114 मंगलवार को हुबली से चलेगी। इस ट्रेन में सामान्य, स्लीपर और AC3 कोच उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन संबंधी योजना के अंतर्गत पंजीकृत
असंगठित श्रमिकों के बच्चों की इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, स्नातक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की पढ़ाई का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सभी श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और श्रोताओं, अब आपके मनोरंजन के लिए पेश है।

मध्य प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत हितग्राहियों के आश्रितों के लिए श्रमोदय मॉडल आईटीआई भोपाल में सत्र 2026-2027 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग द्वारा बदलते मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से संचार माध्यमों से परामर्श दिया जा रहा है। प्राधिकरण के अनुसार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित लोगों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। मॉनसून में आकाशीय बिजली गिरने, मौसम में अचानक बदलाव, तेज गर्जना को खतरे का संकेत मानते हुए सतर्कता बरतनी चाहिए। सर्पदंश की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ना उचित नहीं है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि सतर्कता, जागरूकता और समय पर सावधानी से जनहानि और दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सकती है। आज आवश्यक रखरखाव कार्य के कारण 33 केवी फतेहपुर फीडर से जुड़े 11 केवी न्यू बस स्टैंड मनियर और फतेहपुर फीडरों की बिजली सप्लाई आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। इससे श्रीराम कॉलोनी, फतेहपुर बस स्टैंड, गायत्री कॉलोनी सहित आसपास के समस्त क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। आज दिन में धूप खिली रहने, किंतु संध्या समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आज दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। तो श्रोताओं, इस बदलते मौसम में रखें अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। कुछ ऐसी ही कामना के साथ कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र परवीन को। श्रोताओं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के

0: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM की शुरुआत की गई। JEM पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। JEM से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि JEM की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं JEM से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
6: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन

0: करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिविजनों के साथ साथ सात आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखर दांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं। और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले

के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ते

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का

सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहाँ इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 90.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं, अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज आप सुनेंगे आभा खरे और दामोदर शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए पहले सुनिए आभा खरे से उनका गाया ये

0: ये दादरा अभी आपने सुना आभा खरी से, कुछ और लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के पश्चात।
1: दी, हाँ? ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: Saving करने की भी यही उम्र है।
6: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: I know na,
6: RBI कहता है।
7: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
0: आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आप लीजिए सुनिए दामो

ये थे शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर फिल्म गुलामी के इस दो गाने के लिए। और अब लीजिए सुन रहे हैं आपको आशा भोसले, शरद कुमार, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज़ में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये गीत। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सब। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राना, मीना राना, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, लीजिए आप सभी अपनी फरमाइश पर सुनिए फिल्म द ग्रेट गैम्बलर का ये

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा, दुर्लभ।

द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले, शरद कुमार, अमिताभ बच्चन और साथियों को। और अब हम आपको सुना रहे हैं फिल्म सीता और गीता में किशोर कुमार और आशा भोसले को। गीत को लिखा है नंदबख्शी ने, संगीतकार हैं राहुल दा। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सब लेवा खेल मोहल्ला चांदुर विश्वा से, नारायण भाऊ खड़ से, ललिता खड़ से, परी खड़ से, गणेश कार्तिक भाऊ खड़ से, स्वाति चौधरी और इनके पूरा परिवार ने इस गीत को सुनना चाहा है। लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म सीता और गीता का ये गीत।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ई केवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ई केवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस दीदी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस दीदी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ. आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, जिससे पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ कव्वालियां। कलाकार हैं अजीज नाजा। कलाम मुजफ्फर वारसी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इसके साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अभी यहीं संपन्न हुआ। इसमें आज आपने अजीज नाजा की गई कुछ कवालियां सुनी। FM बैंड 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को आनंद बख्शी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है और इससे हमने लिया है फिल्म

फिल्म फर्ज का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले को। फिल्म इजाज़त से हमने लिया है, गीत गुलजार का है, संगीत

फिल्म प्रेम पुजारी का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले को फिल्म नरम गरम के इस गीत के लिए। गुलजार साहब ने गीत को लिखा है, राहुल दा ने धुन तैयार की।

आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म नरम गरम के इस गीत के लिए, और अब कार्यक्रम के आखिरी पेशकश के रूप में लीजिए सुनिए फिल्म सुहाग का ये गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र की। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह को फिल्म सुहाग के इस गीत के लिए। इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल।

0: पेश है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। जब से मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है उसकी प्रगति थमी नहीं है। ये पहिया ऐसा चला कि आज तक नहीं थमा है। इसने जीवन के कई नए आयाम को खोज और आविष्कार के माध्यम से सुलभ बनाया है। तो श्रोताओं आज बात करेंगे साइकिल की। ये आपके जीवन में क्या परिचय देती है और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। शुरू करते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ जुड़कर।
2: प्रणाम मैम, नमस्कार आपको करता हूँ। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: जी संतोष जी, कैसे हैं?
2: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके प्रसारण सुनते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के। बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के आप आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मैडम आपसे बातें करते हुए।
1: हमें और हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना? तो संतोष जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पहला फोन कॉल आपका है और जानना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है।
2: बिल्कुल, उमंगों का खास एक सुकून भरा एहसास जो दिलाता है वो साइकिल होती है। हम लोग बचपन से लेकर के अभी तक जो शौक रहा है हमारा, अब तो चल खास करके टू व्हीलर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो साइकिलें होती है उससे हमारी शारीरिक मानसिक जो ऊर्जा शक्ति होती है उसका निर्माण होता है। और साइकिल चलाने से हमारी जो पैर की कसरत है वो भी पूरी होती है और इसे बहुत ज्यादा हमें सुकून भी मिलता है मैडम जी।
1: तो आप साइकिल को सुकून का एक जरिया मानते हैं?
2: बिल्कुल मैम, खास करके हम जब युवा रहे हैं, बताएं आपसे अभी भी हम युवा ही हैं और हम लोग जब स्कूल जाते हैं साइकिलों से तो बहुत ही अच्छा लगता है।
1: चलिए साइकिल चलाते रहिए तो आपके जो युवावस्था है ये एक लंबे समय तक तो जरूर बरकरार रहेगी। संतोष जी इसी उम्मीद के साथ में आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने बहुत अच्छी बातें की, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बिल्कुल मैम, और आपके प्रसारण लगातार हम तक पहुँच रहे हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के साथ साथ DTH पर भी आपका जो कार्यक्रम जाता है ना आकाशवाणी मध्य प्रदेश का, बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी ऐसे कार्यक्रम को।
1: जी जी जी जी, साथ में वेव्स OTT ऐप जो है उसके भी 2 वर्ष हो गए हैं हमारे और इस पे भी आप प्रसारण सुनिए तो आपको भी बहुत आनंद आएगा।
2: बिल्कुल मैम, और साथ में फेसबुक पर भी जो कमेंट मतलब जाते हैं आकाशवाणी भोपाल के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मैडम जी।
1: आप बहुत सक्रिय श्रोता लगा रहे हैं हमारे संतोष जी।
2: बिल्कुल मैम, लगातार पत्रचार भी हम लोग करते थे, आकाशवाणी पदाधिकारी हैं चाहे उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्माण होता रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है।
1: अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि आप पत्र लिखा करते थे तो वो लिखा करते थे को लिखा करूंगा बोलिए और लिखना शुरू कीजिए।
2: आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश तक जरूर पहुंचेगा कार्यक्रम मन भावन और कार्यक्रमों के लिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।

0: हेलो, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपका परिचय दीजिए।
0: हम रजनी सोनी बोल रहे हैं दीदी। हम बालाघाट जिला से बोल रहे थे। नहीं
1: जी, साइकिल चलाना जानती हैं?
0: नहीं नहीं
1: लेकिन साइकिल का महत्व है आपके जीवन में, साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है ये बताएं।
0: अब देखो दीदी, अब हम बच्चे वाले हो गए। पहले हम पढ़ते थे तो चलाते थे, अब क्या है हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं।
1: तो बच्चों को साइकिल इनाम में दी कभी?
0: अरे अब देखो, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं तो अपन तो उनके लिए लेते थे ना साइकिल। स्कूल जाते थे, प्राइवेट स्कूल, तो पहले क्या है बस का साधन नहीं, तो 4-5 किलोमीटर में बच्चे चलाते जाते थे। हमारे तीनों बच्चे ने पढ़े हैं
1: हाँ, तो देखिए जब हम
0: जी।
1: वाहन चलाना सीखते हैं ना, तो सबसे पहले
0: अभी
1: हमें
0: तो
1: साइकिल
0: हमारा
1: सीखनी
0: बड़ा वाला
1: पड़ती है।
0: बेटा, हमारे यहाँ गाड़ी वाड़ी सब है, बाकी वो कहता है साइकिल चलाने से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो साइकिल चलाने और शौक लगती है उसको, तो ऐसे व्यायाम टाइप का। हाँ, तो इसलिए वो गाड़ी भी है, पर वो कहता है साइकिल से बहुत स्वस्थ रहते हैं करके वो साइकिल भी फिर अब से फिर से खरीदे हैं। साइकिल के बच्चों ने पढ़े तो हमने उनको बेच दिया जब उन बड़े बड़े हो गए थे जी।
1: तो अभी दोबारा साइकिल खरीदी उन्होंने।
0: अब वो क्या है, थोड़ा सा बोलते हैं गाड़ी गाड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तो साइकिल में थोड़ा सा अपना इधर उधर आस पास घर के थोड़ा सा घूम लेते हैं।
1: हाँ चलिए, तो साइकिल वो अपने व्यायाम के तौर पर ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश,
1: आपका परिचय बता
0: मैं
1: दीजिए।
0: मुन्ना सोनी गुरु नानक स्कूल के पास दमो मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप मैडम?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं। मुन्ना सोनी जी, हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है, बताएं।
0: मैडम कम से कम 33 साल हो गया है मुझे साइकिल चलाते हुए।
1: जी,
0: और आज भी जो है मैं साइकिल चलाता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज साइकिल चलाने से बहुत से फायदे हैं।
1: हाँ हाँ,
0: जैसे हाथ पैर में आपके लिए कभी दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: कमर में दर्द नहीं रहेगा।
1: हाँ,
0: और स्वास्थ्य भी अपना बहुत बढ़िया रहेगा।
1: हाँ,
0: और दूसरी चीज क्या है कि आजकल क्या है कि जरा जरा से काम के लिए बच्चे जो है बाइक से या मोटरसाइकिल से मार्केट चले जाते हैं, तो अपने लिए जो है साइकिल से आसपास के अपने काम निपटाना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल सही,
0: उसमें स्वास्थ्य भी अपना बढ़िया रहेगा।
1: जी जी जी, इसमें काफी कुछ आपकी, देखिए सांस भी आपकी अच्छी हो जाती होगी इससे, क्योंकि इसमें काफी बल लगता है।
0: बढ़िया फिट रहते हैं।
1: हाँ, शारीरिक बल लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। और पैरों की, कमर की तो आप बता ही रहे हैं कि इससे आपको काफी
0: पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं अपने लिए हम।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मुन्ना सोनी जी, आपने साइकिल के इतने इतने अच्छे फायदे गिनवाए।
0: जी मैडम नमस्कार। थैंक यू मैडम।
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार
1: हाँ, आप कौन बोल रही मैम?
0: जी। मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ।
1: हम जानकी गुप्ता बोल रहे हैं, ग्राम भगवंत नगर माजरा जिला टीकमगढ़।
0: जी
1: मोहल्ले से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए ट्राई करते
0: हाँ
1: करते।
0: हाँ हो जाता है, बहुत लोग बातें करते हैं, 10:30 का इसका वक्त होता है। तो जानकी गुप्ता जी, आज हम बात करना चाहते हैं साइकिल पर। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से साइकिल आपके लिए कितनी उपयोगी है।
1: मैडम बहुत उपयोगी है, ना पेट्रोल लगना, ना डीजल लगना है, ना उसका धुआं आने, कुछ भी नहीं आने। अगर चला ली तो अपन कहीं जाते
0: अच्छा।
1: हैं साइकिल से।
0: तो आपके
1: अगर
0: घर
1: स्कूल जब हम स्कूल जाते थे तो साइकिल ही से जाते थे, जब इतनी गाड़ी गाड़ी तो चलती नहीं थी।
0: हाँ, सही बात है, अधिकतम लोग तो साइकिल से ही स्कूल जाया करते थे।
1: हाँ, अब तो ऐसी गाड़ी चल गई थी, अभी स्कूटी चल गई, बच्चा स्कूटी से जाते हैं, लेकिन हम लोग तो साइकिल से जाते थे, कम से कम 6 किलोमीटर दूर। अगर साइकिल खराब हुई तो पैदल भी जाते।
0: सही बात है। तो जानकी गुप्ता जी, आज भी आपके यहाँ साइकिल है या नहीं?
1: हाँ है मैम, हमारे यहाँ साइकिल साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है।
0: और उसका उपयोग कौन करता है?
1: मेरे पति तो है नहीं, मेरे बच्चा है और बच्ची है।
0: अच्छा, साइकिल चलाते हैं वो लोग।
1: हाँ साइकिल, ऐसे कहीं जाते हैं साइकिल से चले जाते। लड़की पहले चलाती, 9वां में पढ़ती थी तो साइकिल से जाती थी स्कूल। अब हम गांव में रह रहा इस समय, तो
0: हाँ
1: वो कम से कम काफी देर से उसने साइकिल चलाई, तो थोड़ी बहुत चला जी भूल सी गई थी। अब कल लगती मम्मी हम भूल गए साइकिल चला। मंदिर गई थी हमारे साथ तो चलाती गई थी, एक लड़की के साथ गई थी, उससे दोनों जने चला के गई थी।
0: जानकी गुप्ता जी, आप अपनी बेटिया से कहिए कि वो साइकिल का अभ्यास करे, क्योंकि साइकिल चलाना, तैरना, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जो इंसान एक बार सीख ले तो वो भूलता नहीं है ना। तो बस थोड़ा सा अभ्यास करेगी तो उसको आत्मविश्वास आ जाएगा उसमें कि मैं साइकिल चला रही हूँ और मेरे से बनती है। तो
1: सही है मैम।
0: चलिए, पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है साइकिल आज, क्योंकि देखिए बिना गाड़ी के तो हमारा काम हो नहीं रहा है, और पर्यावरण की मांग भी है ना। अभी 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे। जाहिर बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण जो होता है वो धुएं से हो रहा है
1: धुएं से होता है।
0: ना। तो जहाँ संभव हो सके वहाँ हमें बचत करनी चाहिए, धुएं कम निकलें इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबका एक प्रयास जो है वो रहेगा, तभी ये काम सार्थक हो पाएगा।
1: हाँ मैम,
0: जी जानकी गुप्ता जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।

0: नमस्ते मैडम, मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत रिटायर शिक्षक सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ। मैडम,
1: आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पर ईंधन की कमी हो रही है, और वैसे भी जीवाश्म ईंधन जो है वो एक न एक दिन तो खत्म होगा ही,
0: होगा वो तो निश्चित है।
1: हाँ, तो ऐसे में जब संकट की
0: होगी मैडम, साइकिल से तो बताए ना मैं कि साइकिल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको अगर शुगर है या बीपी है तो साइकिल आपको बहुत रोकथाम कर देती है, और साइकिल आपकी सस्ती भी है, और साइकिल आपकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बढ़िया है। साइकिल से अपना स्वास्थ्य भी सुधरता है और मेंटेनेंस की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार की कोई परेशानी रख रखाव से लेकर हर चीज की पूरी समस्याएं हल कर देती है मैडम।
1: जी जी,
0: 20 साल साइकिल चलाया हूँ मैडम मैं था, और नदी पहाड़ सब थे, साइकिल सब जगह चल जाती है, नदी पहाड़ कहीं भी चला लूँ, साइकिल बहुत सुलभ है।
1: हाँ, और छोटे मोटे नाले पड़े हैं तो हाथ में उठा करके भी साइकिल पार कर लेते हैं,
0: कंधे में रख करके ले जा लूँ, चल जाती है।
1: चाह रहे थे, क्योंकि देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ ईंधन बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, तो ऐसे में
0: मेरा नाती है मैडम, ये भी बहुत साइकिल चलाता है, लीजिए इससे थोड़ा बात कर लीजिए।
1: बिल्कुल।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम कबीर जैन है।
1: और कबीर, साइकिल चलाते हैं आप?
2: हाँ यस मैम।
1: और कैसा लगता है साइकिल चलाना?
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तो साइकिल से आप कहाँ कहाँ जाते हैं?
2: स्कूल, शॉप और साइकिलिंग पे चल जाते हैं दोस्तों के साथ।
1: और मम्मी कोई सामान लाने के लिए कहती हैं तो साइकिल से जाके जल्दी से ला के देते हैं?
2: हाँ,
1: है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा कबीर, ये शौक हमेशा बनाए रखिए।

0: सुरेश कुमार बोल रहा हूँ मंदसौर से। हाँ भैया।
1: सुरेश जी,
0: हाँ
1: हम ये जानना चाहते थे कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं, है
0: हाँ
1: ना, स्कूल में जो 10वीं 11वीं कर लेते हैं या फिर जब जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वो जिद करने लगते हैं घर में कि हमें गाड़ी खरीद के दी जाए। देखिए, ज़रूरत के लिए अगर हम खरीद रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन एक स्टेटस की बात जब बच्चे करने लगते हैं कि क्योंकि वो लोग गाड़ी से आते हैं तो हम साइकिल से क्यों जाएं, भले ही उनके घर से 2-3 किलोमीटर पे ही विद्यालय है या कॉलेज है, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि नहीं, हमें गाड़ी चाहिए क्योंकि बाकी लोगों के पास गाड़ी है। तो वो तुलनात्मक दृष्टि से जब वो बोलते हैं तो वो कितना सही बोलते हैं।
0: और तुलना नहीं कर रही। अगर पास में स्कूल है तो अपन को भाई पापा साइकिल चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, मतलब
1: हाँ,
0: उनका कहना मानना चाहिए। आजकल बच्चों को भी माता पिता का भी भाई।
1: बिल्कुल सही।
0: मेरा सुझाव ये आपसे मतलब है,
1: हाँ
0: बच्चों को माता पिता जगह कहना मानना चाहिए।

0: में अगर स्कूल वाले पैदल चला जाए, साइकिल पे चला जाए, साइकिल क्या है तो मतलब।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ऐसा है ना कि साइकिल अगर आप चलाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, पेट्रोल से पैसे भी
0: स्वस्थ रहेंगे,
1: बचेंगे।
0: अपना खून का दौरा भी चलेगा और कसरत हो जाएगी, सुस्ती नहीं आएगी शरीर में एक।
1: और सही बात तो ये भी है ना सुरेश कुमार जी, कि आर्थिक दृष्टि से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ना,
0: हाँ
1: एक
0: सर,
1: हाँ बड़ी धनराशि जो है वो घर से खर्च करनी पड़ती है
0: खर्च
1: उसे
0: करनी
1: लेने
0: पड़ती
1: के
0: है
1: लिए।
0: मतलब, और पेट्रोल अगर जहाँ गाड़ी पेट्रोल नहीं, गाड़ी वो रखनी पड़ती है,
1: हाँ
0: साइकिल तो अपन कहाँ भी पैदल भी ले आ सकते, चला भी सकते, मतलब उसका कोई चार्ज भी नहीं लगता है।
1: हाँ चलिए
0: मेरा विचार ये दीदी क्या।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे विचार हमें दिए हैं सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।
0: हाँ धन्यवाद मैडम।

0: जिला सागर तहसील बंडा से भोले लोधी बात कर रहा हूँ।
1: जी जी बहुत स्वागत है भोले लोधी जी आपका। कि बच्चे जो हैं वो आज साइकिल जब चलाते हैं तो उनकी खुशी जो है इनाम के तौर पर जब हम उन्हें देते हैं तो वो बड़े खुश रहते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं है ना, तो वो उनको ये लगता है कि अब हमें गाड़ी चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए। वो देखा देखी में भी ऐसा कहते हैं, तो ये देखा देखी वाली जो बात है साइकिल ना चलाने की, वो कहाँ तक उचित है ना। तो लेकिन साइकिल जो है वो एक स्टेटस सिंबल लोग बाग बना लेते हैं कि इस
0: साइकिल
1: हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम बहुत संपन्न और इस प्रकार से अपने आप को समझते हैं, और साइकिल चलाने को आज कई लोग जो है हीन भावना से देखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है।
0: तो ठीक है, वैसे पर्यावरण से भी बच्चे माने बचा है, पेट्रोल बचता है, इस्तेमाल भी सही है,
1: हाँ
0: दिमाग
1: हाँ
0: भी सही
1: हाँ
0: रहता है। साइकिल
1: जी
0: का उपयोग ज्यादातर करना चाहिए। साइकिल तो बहुत अच्छी है, पहले आदमी होते तो साइकिल से काम होता था, बहुत अच्छा लगता था, जहाँ जहाँ जाते थे।
1: हाँ हाँ
0: साइकिल तो सही है मैम, लेकिन बच्चों को नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चे हैं उनको नहीं देना चाहिए, रोड पे सड़क पे चलाना चाहिए।
1: नहीं, गाड़ी नहीं देना चाहिए। साइकिल तो खैर ऐसा है कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो वो अपने घर के सामने आसपास चलाते हैं, तो
0: ये तो होता है, चलाते
1: हाँ
0: हैं आमने सामने घर के आस
1: हाँ
0: पास।
1: हाँ नहीं, हमारा तो प्रश्न खाली ये था कि जो बनावटी दिखावटी जो दुनिया है उस पे दिखाने के लिए जो बच्चे जिद करते हैं ना कि नहीं अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है उन्हें बड़े वाहन की, लेकिन तब भी वो जिद करके जो है वो स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह खरीदने की जिद करने लगते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे।
0: चाहिए 2 मिनट का रोज कहाँ कर देता है अपन के लिए, रोशनी करना चाहिए।
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भोले लोधी जी, और आप जैसे सक्रिय श्रोता जो हैं, सुधी श्रोता जो हैं, कृतज्ञ हैं कि वो हमारे लिए इतनी अच्छे विचार देते हैं और हमारे रेडियो के साथ में हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आपने बात की।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, परिचय दे दीजिए।
1: जी। लक्ष्मण सिंह चंदेल, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बात कर रहा मैं जी।
0: आज विश्व साइकिल दिवस है, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं
1: अच्छा मैम
0: जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि
1: जी,
0: इनाम के तौर पर कभी साइकिल मिली है, या आपने किसी को दी है, या साइकिल जब हमें कभी कोई मिल जाए कभी बतौर इनाम, है ना। कभी कभी दोस्त भी आपस में एक दूसरे से कहते थे, जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो एक साइकिल चला रहा है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो कहता है अच्छा मैं एक राउंड मारने के लिए मुझे दे दे, है ना। फिर वो जो खुशी मिलती है ना जब उसे मिल जाती है साइकिल, तो वो
1: देखिए मैम, ऐसा है, साइकिल तो मैम हम अभी भी चलाते हैं
0: हाँ
1: जी जी बिल्कुल, और खेत पे जाते हैं तो साइकिल से ही जाते हैं मैम। और कई बार ऐसा होता है जैसे आप बता रही हैं मैम,
0: हाँ हाँ
1: कुछ मित्र लोग भी मांग लेते, क्या बताया हमें ग्राउंड लगा के आ रहे हैं,
0: हाँ
1: बाद में आपकी वापस कर दे
0: तो वही हम कह रहे हैं कि इनाम के तौर पर भी कभी कभी हमें जब साइकिल मिलती है ना, या पहली बार जब कभी आपको साइकिल मिली होगी, तो आप कितने प्रसन्न हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा था, ये बताइए,
1: प्रसन्न का
0: कुछ
1: क्या
0: याद है
1: पहली
0: तो।
1: बात तो यार, जब हम मतलब सीख रहे थे चलाबो मैम, तो
0: हाँ
1: हम यही विनती करते भगवान से कि हम पे साइकिल बनने लगे, हम नारियल फोड़ जो बहुत बहुत मतलब बनने लगी थी। फिर कैची, पहले कैची सीख रहे थे मैम, तो
0: हाँ
1: कैची के बाद में फिर डंडा, फिर सीख सीख पे मतलब ऐसे सीख पाए थे
0: हाँ क्योंकि छोटी साइकिलें बहुत कम बनती थी, बड़ी साइकिल
1: बिल्कुल
0: होती थी तो कैची चलानी पड़ती थी, क्योंकि सीट तक
1: बिल्कुल
0: तो
1: मैम बिल्कुल।
0: हाँ पैर नहीं
1: और
0: पहुंचते
1: कहीं
0: थे।
1: भी जैसे अब जगदीश रथ यात्रा हो अभी आ रही है जो मैम,
0: हाँ
1: इसके लिए हम लोग पथरिया जा रहे थे, कोई चलो कोई तीन जने चलेंगे, आपको टेबल चलाएंगे, कहीं आधी रास्ता में तुम चलाना, आधे में हम चलाएंगे बहुत
0: हाँ
1: मजा आ रहा था मैम
0: चलिए, कितना अच्छा लगता है ना, साइकिल के पुराने दिन भी याद कर लो तो बड़ी खुशी
1: जी
0: होती
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल मैम
0: चलिए लक्ष्मण सिंह चंदेल जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और साइकिल चला करके आप यूं ही खुश रहा कीजिए।
1: बिल्कुल
0: चलिए नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार,
0: जी, नमस्कार
1: परिचय दे दीजिए आपका।
0: जी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार साहू।
1: जी
0: मैं कटनी से बोल रहा हूँ,
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश कटनी से। मैं
1: जी जी जी बहुत स्वागत है आपका।
0: एक्चुअली मैम आर्मी से हूँ
1: आर्मी में हैं तो आप लोग क्या साइकिल चलाते हैं?
0: जी। साइकिलिंग करते हैं मैम।
1: अच्छा, तो साइकिल का कितना महत्व है आर्मी में?
0: साइकिलिंग एक्चुअली मैम हम लोग क्या है, जैसे ड्यूटी एरिया थोड़ा सा दूर है तो क्या है, हम लोग या तो बाइक रखते हैं या तो साइकिल वगैरह रख लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: जी तो देवेंद्र कुमार साहू जी ये जानना चाहेंगे कि आजकल तो बहुत एडवांस साइकिलें आने लगी हैं, तो अच्छी साइकिलें भी आ चुकी हैं, लेकिन तब भी लोगों का रुझान जो है वो साइकिल की तरफ नहीं है। तो साइकिल की
0: हाँ
1: तरफ रुझान जो लोगों का बढ़े, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: आजकल क्या है, रूटीन भी लोगों का ऐसा हो गया है कि पैदल चलना नहीं चाहते, है ना।
1: जी।
0: तो अगर साइकिल से अगर जाते हैं तो बहुत ही पेसिंग करना है, थोड़ा सा दूर है 2-3 किलोमीटर, तो साइकिल से अपना काम हो
1: हाँ
0: जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। और साथ साथ में हम तो ये कहते हैं कि साइकिल के प्रति रुझान यदि वो बढ़ा लें तो व्यायाम भी होगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छा होगा।
0: क्या बॉडी में फिट रहेगा,
1: हाँ, और पेट्रोल बचेगा,
0: शरीर
1: पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा
0: ऑक्सीजन
1: है।
0: बहुत हो गया तो ये सब में कंट्रोल होगा।
1: जी, बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार।

0: तो श्रोताओं, साइकिल कितनी उपयोगी है इस विषय पर श्रोताओं ने अपने विचार दिए। आज साइकिल चलाना कई लोग पसंद नहीं करते, वक्त की कमी की बात कहते हैं तो कभी दूरी की। लेकिन मित्रों, पर्यावरण की दृष्टि से आज के परिपेक्ष में साइकिल को अपनाना जरूरत बन गई है। आज एडवांस साइकिल मार्केट में उपलब्ध है, गियर होते हैं, उसमें बैटरी भी होती है। ये सारी सुविधाओं को यदि आप अपनाएंगे तो आपको आसानी भी रहेगी और आज के परिपेक्ष में साइकिल देश हित में साबित होगी। चाहते थे लोगों में साइकिल के प्रति जागरूकता बढ़े, तो आप कार्यक्रम समेटने की अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास।

ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री यवेद कपूर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कपूर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वो आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी है। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। और भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में शुरू हो रही 4 दिवसीय ओपन रैंकिंग सीरीज प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आर डी वर्मन का है और इस गीत को सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया,

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार की। नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गीत को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े, आरती जोंधड़े, नेपाल पैलेस सागर से ये हमारे श्रोता हैं। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन और सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा हदिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तावा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बरसात की एक रात फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आर डी बर्मन का है।

तेरे मेरे सपने इस फिल्म का गीत अब आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है नीरज ने और धुन तैयार की है एसडी वर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहा है औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, और इसी गीत को पसंद किया है हुलास राम कटरे, नानेश्वरी कटरे, ये हमारे श्रोता है करियादंड बालाघाट के। और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने लिख भेजी है हमें इस गीत की फरमाइश। तो सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद तेरे मेरे सपने फिल्म से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज है। फिल्म का नाम है जीने की राह और इस गीत को पसंद किया है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने। जयबराज प्लॉट राजकोट से ये पत्र हमारे पास आया है मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट का। और देवरी भाटापारा से ही इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विन वर्मा और गणेश मिस्त्री।

0: गीत साहिर लुधियानवी ने लिखा है और संगीत जयदेव का है। इस गीत को पसंद किया है बनिया पारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती और पूरा माखीजा परिवार। साथ ही साथ इसे पसंद किया है इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। और बेरड़ी से ये हमारे श्रोता ने पत्र भेजा है हुकुम करम कर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर ने। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं हम दोनों फिल्म का ये गीत।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: पत्र द्वारा भेजी गई फरमाइश के आधार पर आज अभी श्रोता सुन रहे थे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनिए इसकी

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह रसूल से हो जाता है। सारे और रसूल के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती है। अपनी बेटी को नाखुश देखकर हसन बट एक दिन फाता पर बरस पड़ते हैं। इसके बाद हसन बट घर छोड़कर पास ही एक कोठरी में रहने लगते हैं। एक दिन मुश्ताक हसन बट से मिलने आता है, जहां सारे से मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और वे अक्सर मिलने लगते हैं। अब आगे।

0: गए मुश्ताक, बड़ी देर कर दी।
1: बहुत सारे कुछ लोग मिल गए थे।
0: मुश्ताक, मुझे एक जरूरी बात करनी है।
1: हाँ हाँ बोलो, क्या बात है?
0: अब हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। गांव वालों को हमारे मिलने की भनक लग गई है और वे लोग हमें अलग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
1: सारे तुम फिक्र ना करो, गांव वाले हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। जब हम एक हैं तो हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा।
0: पर मुझे बहुत डर लग रहा है मुश्ताक, अगर ये बात गांव में फैली और रसूल को पता चला तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हमें कुछ करना चाहिए मुश्ताक।
1: अरे तुम इतनी परेशान ना हो, मैं तलाक के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रसूल के आने के बाद ही कुछ हो सकता है।
0: ठीक है, पर तब तक हमें एहतियात से काम लेना होगा ताकि गांव वाले हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सके।
1: सारे डरने की कोई बात नहीं, रसूल के आते ही हम तलाक की बात कर लेंगे। और जहां तक गांव

0: Assalamualaikum bhai.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bhai.
0: क्या बातें हो रही थी?
1: अरे वो कुछ भी नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें हो रही थी।
0: अरे इधर उधर की बातें पता नहीं चला कुछ हा? अरे मिल्की कोठी में जो हसन भट रहता है ना।
1: अरे हाँ हाँ, पर क्या हुआ हसन भट को?
0: अरे उसकी बेटी जो सारा है ना।
1: हाँ हाँ जानता हूँ उसे, बोलो तो सही।
0: अरे मुश्ताक के साथ उसका चक्कर है।
1: लाहौल विलाओ कुवत। अरे मियाँ ये क्या कह रही हो?
0: अरे सही कह रहा हूँ, वो लोग हसन भट की कोठी में मिलते हैं।
2: सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है भैया।
1: लेकिन सारे का निकाह तो रसूल के साथ हुआ है ना, अब फिर ये?
2: अरे पहले तो उसी मुश्ताक के साथ हुआ था, फिर तलाक हो गया था ना।
0: इसका मतलब है तो रसूल की बीवी ना। फिर एक औरत अपने मर्द की गैर हाजिरी में गैर मर्द से मिले, ये तो उसूल के खिलाफ है।
1: हाँ हाँ भैया बिल्कुल, अरे इससे तो हमारी बहू बेटियाँ भी बिगड़ सकती हैं।
0: हमें कुछ करना चाहिए।
1: अरे बेगैरत औरतों को जो मर्द के रहते दूसरे मर्द को देखे उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए।

0: लेकिन सारे ऐसा क्यों करेगी?
1: अरे जिस औरत को मर्द की हवस हो वो कुछ भी कर सकती है मियाँ।
0: हाँ, लेकिन मुश्ताक उसका पहचान वाला है, उससे मिलने में क्या बुराई है? अरे हो सकता है वो लोग यूं ही मिलते रहते हो।
2: अल्लाह, अरे मैंने तो सुना है रसूल को धोखा देकर सारा मुश्ताक के साथ नाजायज ताल्लुकात रखती है।
0: अरे तो रसूल कौन सा भला आदमी है, है? कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं?
1: अरे मर्द चार चार निकाह करे ये जायज है, हमारे मजहब में इसे जायज बताया गया है। पर औरत के लिए अपने शोहर को छोड़ दूसरे मर्द को छूना भी गुनाह है, और अगर कोई इस पाक असूल को तोड़ता है तो उसे सजा का भागीदार होना ही पड़ेगा।
2: इस मामले में फाता व हसन भट्ट को हम सब लोगों को मिलकर समझाना चाहिए ताकि वो सारे पर लगाम कसे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सही कहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे को पूरे गांव के सामने सजा दी जाएगी।
2: हाँ।
1: ताकि हमारी बहु बेटियां सबक ले सकें।
2: और भाई दूसरे गांव का आदमी हमारे गांव की बेटी के साथ रंग रैलियां मनाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
0: अरे पहले उसके अम्मी और अब्बू से तो बात करो, अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी है, अरे बदनामी से तो बचेंगे।
1: हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम हसन भट्ट और फाता से बात करेंगे, नहीं माने तो गांव में पंचायत बुलवाएंगे। एक औरत हमारे मजहब को नकारे ये हम नहीं सहेंगे मियाँ। हाँ चलो, ये नहीं सहेंगे हम।

0: गांव में थू थू हो रही है हमारी।
1: पाता, शांत रहो। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता।
0: तो और क्या करोगे तुम बाप बेटी मिलकर?
1: तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे हमें सोचने तो दो।
0: मेरी बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। सारे अब मुश्ताक से कभी नहीं मिलेगी।
1: सारे और मुश्ताक मिलते हैं या नहीं? अगर मिलते ही हैं, तो वो हमारा रिश्तेदार ही है, कोई गैर तो नहीं। और तुम किन लोगों की बातों में आकर ये सब तमाशा कर रही हो?
0: तमाशा? अरे तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तुम और सारे कर रहे हो। सारा गांव हमारे नाम पर।
2: अब रहने भी दो अम्मी।
0: क्यों रहने दूं? के तू सारे गांव में मुंह काला कर आए, इसलिए?
2: मैं मुश्ताक से प्यार करती हूँ।
0: सारे सारे कमबख्त लड़की, बंद कर अपनी जुबान वरना हलक से खींच कर बाहर कर लूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है। तेरा निकाह रसूल से हुआ है और तू अब मुश्ताक से प्यार करती है? जुबान न काट दूं तेरी।
1: ये क्या कह रही है फाता?
0: मैं जो कह रही हूँ वही सही है।
1: तो क्या गांव वाले सच बोल रहे हैं?
0: नहीं तो क्या झूठ बोलेंगे?
2: ये सच है अबू कि मैं मुश्ताक से मिलती हूँ, पर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो सच नहीं है।
0: हाय, किस्मत फूटी मेरी जो तुझे जना बदनामी करा कर जुबान लड़ाती है।
2: जो बात है वही कह रही हूँ।
1: सारे, अब तेरा निकाह रसूल से हो चुका है और ऐसे में तू रसूल के सिवा किसी और से मेल जोल रखे तो ये हमारे मजहब के खिलाफ है बेटा, और इससे हमारी बदनामी होगी। अगर हो सके तो तू मुश्ताक से ना मिल।
2: मुझे और मुश्ताक को मिलने से कोई नहीं रोक सकता।
1: सारे, क्या तुझे अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? अब मैं सारे गांव वालों को क्या जवाब दूं? क्या कहूं मैं उनसे कि मेरी बेटी हम

0: सामने हमारे उसूलों को खाक में मिला रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते।
1: अब्बू अब्बू अब्बू, आप परेशान मत होइए, जो होगा उसे मैं संभालूंगी।
2: अरे नामाकूल, तू तो हमें मार कर ही खुश होगी।
1: कौन किसे मार रहा है अम्मी, ये तो खूब जानती है।
2: मुझसे जुबान ना लड़ा, आखिर तू कहना क्या चाहती है? मैं बुरी हूँ और तू जो कर रही है वो सही है।
1: मुश्ताक से तलाक किसने दिलवाया मुझे? मैं आज भी मुश्ताक से प्यार करती हूँ, और जहाँ तक बात रसूल की है तो मुझे बदनामी का कोई डर नहीं। रसूल से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
2: कुछ भी हो, अब रसूल तेरा शौहर है।
1: रसूल को मेरी जिंदगी में जबरदस्ती धकेला गया है, और अम्मी ये सब तेरा किया धरा है। मैं रसूल को शौहर नहीं मानती।
2: अरे एक बार जो रिश्ता बन जाए वो कभी नहीं टूटता।
1: मेरा रिश्ता सिर्फ मुश्ताक से था, है और रहेगा।
0: सारे एक बार और सोचिए बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोच। हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसे जवाब देना होता है, और अगर तू रसूल के रहते मुश्ताक से अपने ताल्लुकात रखती है तो हम क्या जवाब देंगे, बोलो।
1: किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है अब्बू।
2: तुम्हें नहीं है शायद, पर समाज इन रिश्तों को नहीं मानता, और हमें तो जवाब देना ही होगा। हम इस समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ सकते।
1: किस जवाब और किस मर्यादा की बात कर रही है अम्मी? आज जो लोग तुमसे, अप्पू से या मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुश्ताक से रिश्ता क्यों रखती हो, तो क्या तुम्हारा समाज मेरे सवालों का जवाब देगा कि रसूल से नूरी का तलाक क्यों हुआ? मेरी इच्छा के बगैर रसूल से मेरा निकाह क्यों पढ़वाया गया? मुश्ताक से मेरा तलाक धोखे से क्यों करवाया गया? रसूल जो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़कर शहर में दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता है?
2: अरे जा, अपनी जुबान न चला। तू औरत है और औरत की मर्यादा में रह। मर्दों की बातों में दखल अंदाजी न दे। औरतों को सवाल पूछने का हक नहीं।
1: जो इंसाफ करते वक्त दोनों तरफ की बातें ना सुने, उनके सामने मुझे दलील देने की कोई जरूरत नहीं है।
0: सारे, रसूल से तेरा निकाह हुआ है, क्या तू इस रिश्ते को

0: आए वो ही करेगी।
1: मैं औरत हूँ इसलिए किसी मर्द की जूती बनकर रहूंगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से मुश्ताक के साथ रहूंगी और रसूल रसूल में

0: विचार करना चाहिए। अगर सारे नहीं चाहती कि वो रसूल के साथ रहे तो हमें भी उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पहले भी एक बार हम सारे के साथ गलती कर चुके हैं। अब
1: अम्मा तुम चुप रहो। आज तक किसी का भला चाहा है तुमने? तुम्हारी बेटी सारे गांव में मुंह काला किए फिर रही है। शौहर रहते मुश्ताक से मिलती जुलती है और तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाय,
0: मैं तरफदारी नहीं कर रहा। अगर सारे चाहती है कि वो मुश्ताक के साथ रहे तो उसे...
1: या खुदा, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और इस घर में तो कभी नहीं, मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी।
2: तो मैं ये घर छोड़ दूंगी।
1: धमकी देती है मुझे अपनी माँ को।
2: अम्मी, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जब कहो तब मैं ये घर छोड़ सकती हूँ।
0: सारे, अंदर जा, हमें सोचने दे कि हम क्या करें।
1: जरा देखो इस बदसात लड़की की हिम्मत तो देखो।
0: सारे, तू अंदर जा। फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है। अच्छे बुरे की पहचान है उसे। हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर खोल रखा है। हमें ही संभालना होगा उसे।
1: या खुदा, तुम बाप बेटी पागल हो गए हो। बेटी की जिद के सामने तुम झुक

0: आ गए रसूल, आओ बैठो यहाँ।
1: फाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: क्या सुन रहा है?
1: सारे के बारे में लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
0: तुमसे क्या छुपाना बेटा?
1: फाता, साफ साफ कहो, क्या ये सच है?
0: हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही सारे मुश्ताक से मिलती रही है।
1: तो तुमने उसे रोका नहीं?
0: रोका था, पर पहले तो मुझे इधर उधर की

तू अंदर जा फाता, ये ना समझ कि वो अभी भी बच्ची है। अच्छे बुरे की पहचान है उसे, हमने उसकी जिंदगी में पहले ही जहर खोल रखा है।

0: बेटा तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता?
0: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त बेटा तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता?
0: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं। वक्त

0: बेटा तुम ठीक तो हो?
1: हाँ अबू, अबू मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता?
0: बेटा वक्त के हाथों में हम सब कठपुतलियां हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। शशि कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सूरत में 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति देने के उद्देश्य से हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल एक बैठक के दौरान अधिकारियों एवं खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के लिए 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और खेलों की खबर में सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर।

तो आप इस वक्त घर पर ही आ जाइए अपने रेडियो सेट के नज़दीक, क्योंकि हम आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा लेकर। मैनो गर्मी की छुट्टियां आपके साथ इस वक्त थोड़ी सी व्यस्तता भरी हो सकती हैं। बच्चों की घर में धमा चौकड़ी तो चल ही रही होगी और साथ ही आप व्यस्त होंगी उनके ठंडक भरे पेय बनाने में। साथ ही उनको समझाइश भी चल रही होगी कि तेज गर्मी से एकदम ठंडक में ना आए और ना ही बाहर से आकर एकदम ठंडा पानी भी ना पिए। जहाँ तक हो सके तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। बाहर जाने से पहले लू से बचने के लिए दादी नानी का नुस्खा ज़रूर अपना लें, यानी निकलने से पहले पेट भर कर पानी पी कर निकलें और फिर अपना मुंह कान बांध कर निकलें। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें लू से बचा सकते हैं। बहनों, वैसे जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अपनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का भी सबसे सही समय होता है, क्योंकि बाकी पूरे समय कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कोचिंग, तो कभी हमारे कुछ ज़रूरी काम होते ही हैं। पहले हम लोग नानी के घर जाने के लिए छुट्टियों का इंतज़ार करते थे और अब ज़्यादातर एकल परिवार होने से बच्चे अपनों से ही दूर हो जाते हैं। तो कुछ समय ऐसा ज़रूर निर्धारित करें कि हमें अपनों का साथ मिल सके। इसके अलावा कई लोग घूमने भी जाते हैं, वहाँ की जानकारी लेते हैं और बेहतर समय परिवार के साथ बिताते हैं। तो कुछ लोग अपनी रुचि, अपने हुनर को और अधिक अच्छे तरीके से सीखने में समय बिताते हैं जो भविष्य में काम आ सके। कुछ रचनात्मक शौक पूरे करके अपने समय का सदुपयोग भी करते हैं। मैंने बातें आपसे और भी करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, ये तो आप भी मानती ही होंगी कि छोटे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जिस रूप में, जिस आकार में ढाल दें, वही रूप बस ले लेते हैं। हम चाहें तो उन्हें बचपन से ही सुसंस्कार से सज्जित कर दें, या फिर उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें। उनके सामने लड़ाई झगड़ा करके या फिर अपशब्दों का उपयोग करके उनके मन में कुंठा भर दें। जब घर में, समाज में बच्चे अगर इस तरह का व्यवहार देखते हैं, तो ही उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब देशों में युद्ध की स्थिति निर्मित होती है, तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पर तो पड़ता ही है, साथ ही जन हानि भी होती है। जाने कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोगों का अपनों का साथ भी छूट जाता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं छोटे निर्दोष मासूम बच्चे, जो इन सभी बातों से बेखबर होते हैं। जो उम्र उनके माता पिता पर निर्भर रहने की होती है, उस उम्र में वो बेघर हो जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 4 जून को आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को हुई थी। अपनी 31वीं पूर्ण बैठक में, अपने पुनः शुरू हुए 7वें आपातकालीन विशेष सत्र में फिलिस्तीन के मुद्दे पर विचार करते हुए इजराइल के आक्रामक कृत्यों के शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों की बड़ी संख्या से स्तब्ध होकर हर साल 4 जून को आक्रामकता के निर्दोष बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को स्वीकार करना है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आखिर उन्हें भी तो एक स्वस्थ, अच्छा जीवन मिल सके, इसके लिए एकजुट होकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक प्रयास ही तो है ये। बहनों, ये आखिर ये मासूम बच्चे अपनों से जब दूर होते हैं, तो उनकी याद उनके जहन में ज़रूर होती है। उस समय, खासकर युद्ध के समय, कुछ भयानक दृश्य उनके मानसिक पटल पर गहरी छाप भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी प्रभावित हो सकता है। और बहनों, मानसिक रूप से प्रभावित ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से या कुछ भी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित होने पर मानसिक रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं। इस स्थिति में दवा के साथ उन्हें भावनात्मक सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आती हैं और उन्हें न केवल आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देती हैं, बल्कि उसके साथ साथ भावनात्मक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाती हैं। इस दिशा में ये आक्रमण से पीड़ित बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा सा सहारा, भावनात्मक लगाव उन्हें संभाल लेता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, ताकि उनका शारीरिक, मानसिक विकास हो सके और आर्थिक रूप से भी ये सक्षम हो सकें। आखिर मासूम बच्चे मन के तो सच्चे होते ही हैं, जल्द ही संभल भी

0: बहनों, हम सभी की चाहत होती है कि मन प्रसन्न रहे, हम आप सदा मुस्कुराते रहें। कभी कभी हमें किसी की मुस्कान बहुत ही प्यारी लगती है। अगर हमारे दांत स्वस्थ हों, सुंदर हों, तो हम खुलकर हंसते भी हैं। कई बार हम दांतों के रोग को नज़रअंदाज कर देते हैं और तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। दांतों का ही एक रोग है पायरिया। आज हम स्वास्थ्य भेंटवार्ता में जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, दांतों में होने वाले रोग पायरिया, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी है डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी ने और उनसे बातचीत की है हमारी सखी संयोगिता ने।
1: श्रोता बहनों, मुस्कुराता चेहरा हर किसी की चाहत होती है। उस मुस्कुराहट के पीछे मोती जैसे दांत सोने पे सुहागा जैसा काम करते हैं, पर हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके दांतों में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, पीलापन होता है या किसी प्रकार का रोग होता है। दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में आज हम जानकारी लेकर आए हैं। हमारे साथ हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी, जो हमें दांतों में होने वाले रोग पायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी

0: देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दांतों में होने वाला पायरिया रोग है क्या?
1: देखिए, पायरिया रोग तो जो है ये मुख्यतः जो दांतों में गंदगी रहती है, जिसे कि हम मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की भाषा में प्लाक सरफेस या टाटर या कैलकुलस कहते हैं, और आम भाषा में इसको अपन पपड़ी का बोल देते हैं, कि जो अन्न के कण हैं बारीक बारीक के दांत और मसूड़े के बीच में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि ये रोग होता है। इस रोग में पहले तो हल्की फुल्की तकलीफ होती है, पेशेंट को ब्रश करने पर खून आता है, और थोड़ा सा अगर इस ये रोग बढ़ जाता है तो मुँह से बास आने लगती है, ठीक है, और लेट स्टेज में पूरे मसूड़े पिलपिले टाइप के हो जाते हैं और इससे मवाद निकलने लगता है, और ये मवाद पूरा अपने मुंह के द्वारा पेट में जाता है, पेट के द्वारा अपने पूरे शरीर में फैलता है, जिससे कि अपना जो शरीर है ये डल टाइप का हो जाता है, और अन्य फुर्तीला जिसे बोलते हैं कि शरीर में फुर्ती नहीं रहती है, आलस बना रहता है, आदमी चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसलिए ये रोग का इलाज होना अति आवश्यक है।
0: मतलब दांतों का जो पायरिया रोग है केवल दांतों तक ही सीमित नहीं है, ये दांतों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल
1: बिल्कुल
0: सकता है।
1: जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे कई लोगों को डायबिटीज रहती है, अगर डायबिटीज किसी के उन डायबिटिक पेशेंट को अगर पायरिया रोग है तो उनकी डायबिटीज भी दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहती। तो जैसे कई मरीज बोलते हैं, साहब हम तो दवाई लेते हैं, पैदल रोज चलते हैं, खान पान का परहेज रखते हैं, फिर भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है। उसके लिए अगर किसी को पायरिया रोग है तो उसका इलाज कराना अति आवश्यक है, तभी उसकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो पाएगी।
0: मतलब साधारण रूप से हम दांतों की इस समस्या को ना ले, हाँ, जिस तरह से आप बता रहे हैं
1: बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि इससे देखिए एक तो पेट की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज का भी फर्क पड़ सकता है, और कोई भी खराब चीज अगर शरीर में जा रही है, पस अगर शरीर में जा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो कोई ना कोई तो रोग उत्पन्न करेगा शरीर में अंदर।
0: शुरुआती लक्षण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो किस तरह
1: शुरुआती लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश करने पे खून आना, मुंह से बास आना, मवाद निकलना, ये सब लक्षण है पायरिया रोग के।
0: तो कई बार ये होता है डॉक्टर साहब कि हम जैसे ब्रश कर रहे हैं तो एक आध बार मतलब दांतों से ब्लड हमें दिखाई देता है, फिर वो बंद हो जाता है, फिर हम करते हैं तो फिर कभी दांत में दर्द होता है, तो क्या ये भी पायरिया के अंतर्गत आता है?
1: हाँ, ये पायरिया, क्योंकि जब ब्रश करने में ब्लड जो आना, ये पायरिया रोग का ही लक्षण है। ये
0: मतलब हमें चिकित्सक के पास जाना,
1: जाके इसका इलाज कराना चाहिए। इसका जो इलाज है, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इलाज के लिए जैसे कि हम लोग सिंपल जो है, पहले अगर कम स्टेज में रोग है, जैसे सपोज करिए कि ब्रश करने पे खून भर आ रहा है, तो उस अवस्था में सिर्फ दांतों के अल्ट्रासोनिक स्केलर्स के द्वारा सफाई करके इस रोग को ठीक किया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर ये रोग बढ़ गया है, जिसमें कि मवाद आने लगी है, मुंह से बास आने लगी है, तो उसमें हम लोग मसूड़ों की सर्जरी करते हैं। फ्लैप सर्जरी है, जिंजाइबोप्लास्टी है, जिंजिवेक्टमी है, मसूड़ों के अलग अलग प्रकार की सर्जरी रहती है, वो करते हैं। और जो आजकल लेटेस्ट कर रहे हैं वो मैं जो करता हूँ वो डेंटल लेजर के द्वारा इस रोग को खत्म करता हूँ। जो मसूड़ों की सर्जरी मैनुअली करते थे तो वो आजकल लेजर के द्वारा हम करने लगे।
0: मतलब ये सुविधा आज हमारे पास उपलब्ध है,
1: जबलपुर शहर में है उपलब्ध, ये
0: कि लेजर के माध्यम से भी पायरिया का इलाज,
1: उसका जो रिजल्ट है इतना अच्छा है कि ये रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है।
0: मतलब लेजर के माध्यम से भी आजकल पायरिया का इलाज हो सकता है।
1: जी।
0: तो ये किसी तरह की घबराहट हमारे सुनने वाले अपने मन में ना रखें कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं।
1: लेजर का एडवांटेज भी बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैनुअल सर्जरी करते हैं उसमें इंजेक्शन लगा के शून्य करा जाता है, मसूड़ों को खोल के टांके लगाए जाते हैं, हैवी दवाइयाँ दी जाती हैं। लेजर में ये फायदा है कि शून्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पेशेंट को करते समय कोई तकलीफ नहीं होती है, बाद में बहुत हैवी मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये थोड़े से फायदे हैं लेजर के,
0: ये बेनिफिट हम लेकर जाते हैं अपने साथ में। अच्छा, ये पायरिया रोग क्या उम्र का भी इस पर कोई फर्क पड़ता है? जैसे छोटे बच्चे हैं क्या उनको भी हो सकता है, या एक उम्र पार करने के बाद ही पायरिया के लक्षण पाए जाते हैं?
1: ये रोग तो किसी को भी हो सकता है, बाकी जो उम्र की जहाँ तक आपने बात करी तो ये जो रोग है ये 12-13 साल के बाद ही डेवलप होता है, जब पूरे बच्चों के पक्के दांत आ जाते हैं तभी ये रोग डेवलप होता है और लेट स्टेज में, अन्य 40-45 के बाद में ये इसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं मरीजों में।
0: जी, तो मतलब उम्र का भी फर्क पड़ता है, मतलब छोटे बच्चों में ही नहीं होता है, 12-18 जैसे आपने बताया,
1: 18 मतलब 14-15 साल के बाद से लेके 40-45 साल की एज में ज्यादा मिलते हैं। और ये जो रोग है गाँव वालों में, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं उनमें ज्यादा रहता है, शहर के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये अपेक्षाकृत कम रहता है ये रोग।
0: अच्छा, एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये रोग ज़्यादा देखा गया है, तो किस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा शिकार होते हैं? क्या वो जो परंपरागत दातून करते हैं उस वजह से है, या शहरी लोग

0: हम जो करते हैं वो ब्रश लेते हैं इस तरह से।
1: दतून करना बहुत अच्छा है काम, दतून के लिए तो बिल्कुल भी, दतून तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है
0: जी।
1: बाकी ये जो शहरी लोग को जैसे मैंने बताया कम होता है, क्योंकि अपन पेस्ट और ब्रश करते हैं तो जो अन्य के कण है वो दांत और मसूड़े के बीच में नहीं जम पाते हैं, तो गाँव वाले जो है सिर्फ दतून करते हैं और ये और अंगुली से मंजन कर लेते हैं
0: जी जी।
1: अगर वो ब्रश का उपयोग करें साथ में तो फिर ये उनका जो मैल जो जमता है, जो अन्य के कण जमा हो जाते हैं, वो जमा नहीं होंगे।
0: नहीं तो धारणा तो ये भी है सर कि हम अगर ब्रश करते हैं तो दांतों में होल ज्यादा होता है ब्रश से।
1: नहीं, होल नहीं होते दांत, क्या है कि किसी भी चीज को अपन ज्यादा घिसेंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीज घिसेगी। ब्रश ऐसा होना चाहिए कि जो अन्य के कण फंसे हैं वो दांत और मसूड़े साफ हो जाए। ब्रश ऐसा नहीं होना चाहिए कि दांत मोती समान चमकते रहे अपने चमकाने के उद्देश्य से,
0: तो नुकसान नहीं हो दांतों को इस तरह।
1: दो चार मिनट तक ब्रश करें वो ज्यादा अच्छा है अपने लिए।
0: किस तरह की सावधानियां रखें कि दांतों में पायरिया रोग ना हो?
1: सावधानी जो है, जो मुख्य है सावधानी, वो साफ सफाई है। जैसे कि अपन सोचते हैं कि सुबह और शाम को ब्रश कर लिए तो अपने दांत स्वच्छ रहेंगे, अपन को रोग नहीं होगा मुंह का, ये बिल्कुल धारणा गलत है। मेरा ये कहना है कि अगर अपन कुछ भी चीज खाते हैं, दिन में अपन 10 बार कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं, उसके बाद सादे पानी से कुल्ला बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे कि जो अन्य के कण जो फंसे हैं दांत और मसूड़े के बीच में, या कोई चीज पिए तो उसकी जो लेयर अपने मुंह के अंदर या दांतों के मसूड़ों के ऊपर जम गई है वो पूरी धुल जाना चाहिए। और सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं और कुछ भी चीज खाएं पिएं उसके बाद कुल्ला बहुत अच्छे से करें। हरी सब्जी फल इनका उपयोग करें, जो मीठी चीजें हैं चॉकलेट्स वगैरह हैं इनका उपयोग ना करें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सकता है। और जो बैड हैबिट्स हैं बीड़ी तम्बाकू सिगरेट इसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए,
0: ये भी मतलब खतरनाक
1: सब खाएं, ये रोग के कारण है ये सब।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैंने अभी सुन रही थी स्वास्थ्य भेंट वार्ता, दांतों में होने वाला रोग पायरिया, इस विषय पर डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी से संयोगिता की बातचीत। बहनों, एक बार फिर हम गर्मी की छुट्टी पर आते हैं तो क्यों ना एक बार कुछ अपनों से और बच्चों से अलग करवाया जाए। तो बच्चों की पूरी छुट्टी व्यस्त रखना भी ज़रूरी है, और व्यस्तता भी ऐसी कि छुट्टियाँ सार्थक हो जाएँ। वो जो भी सीख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी घूमने गए हैं या घर पर ही हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी पूरी छुट्टी में, उसके लिए उन्हें एक डायरी दे दी जाए और उनसे कहें कि हर दिन अपना अनुभव इसमें लिखें, भले ही 4 लाइन में लिखें या 6 लाइन में। इससे आजकल जो बच्चे कॉपी किताबों से पढ़ने के शौक को ख़त्म हो रहा है वो विकसित होगा। और उन्हें बताएं अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके थोड़ा सा लिखें, और हर रोज़ हम उन्हें कुछ नए शब्दों का प्रयोग भी बताएं, जिससे उनका भाषा सुधार होगा, शब्दकोश में वृद्धि होगी और उनकी राइटिंग में भी सुधार होगा, लेखन में छोटी छोटी गलतियों का पता भी चलेगा। और अंत में उन्हें अपनी छुट्टियों का सार लिखने को भी कहें, निश्चित रूप से हम उसे हर दिन देखते भी रहें, इससे उनके विचार उनके भाव हमें पता चलेंगे। इस बारे में आप हमें भी ज़रूर बताएं। तो बहनों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

0: तो देवलेकर,
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। कलाकार हैं संगीता उपाध्याय। पहले सुनते हैं इनसे ईसूरी।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे संगीता उपाध्याय के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है। कलाकार हैं नंद कुमार जैन। पहले सुनते हैं इनका गाया ये।

आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर या कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों अथवा आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।

आप सुन रहे हैं आपकी आकाशवाणी, ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश सुना।

मीडिया वेव 182.32 MHz और DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया। मैंने सीआरपी का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान एनजीओ में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि ईवी से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला

विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉ. ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफको कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने

0: ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। आपकी पसंद का पहला गीत हम लेकर हाजिर हैं हीरो पंती फिल्म से। मुस्तफ़ा जहीद ने इस फिल्म को गाया है। कौशर मुनीर की शब्द रचना, संगीत मुस्तफ़ा जहीद का। सुनना चाहा है बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से पधराया रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया का।

अगला गीत हमने लिया सत्यमेव जयते फिल्म से। इसे सुनना चाहा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी दुबिहा नेवादा गाजीपुर से पतराया प्रतीक राय, रोशनी प्रांजल का। इसी गीत की फरमाइश भेजी आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। सत्यमेव जयते के इस फिल्म के इस गीत को गाया है जरा के खान ने। तनिष्क बागची का गीत और संगीत है, तो आइए सुनते हैं ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अगला गीत सुना जा है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साविर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये फरमाइश करता है आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी और करिश्मा गौरी नगर इंदौर से सपना संगीता रोड इंदौर से ही पत्रा है लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया का इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है उदित नारायण और पूर्णिमा का गाया हुआ समीर का लिखा आनंद बख्शी का संगीतबद्ध किया माफ कीजिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया हीरो नंबर 1 फिल्म का गीत

गायक कलाकार हैं करण औजला। फिल्म का नाम बैड न्यूज़। इस गीत को सुना चाहा बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का, फिर शंकरलाल राहुल कुमार सविता स्वाति एवं पूरा माखीजा परिवार। औरंगाबाद से पत्राया राजेश साबले, राजदीप राजेश राजी राशि और शीतल।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश का मोहब्बतें फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत जतिन ललित का है। सुनना चाहा है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन। आदर्श नगर मलोट पंजाब से पत्राया राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश और सौरभ शर्मा का। तो आइए आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद का मोहब्बतें फिल्म का गाना।

कार्यक्रम का अंतिम गीत तुम मिले फिल्म से है, आवाज़ है के की। सईद कादरी के बोल हैं, संगीत प्रीतम का है। सुना चाहा है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। भाटापारा दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से पत्र आया, द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक, झावेंद्र कुमार। यहीं से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, सूरज, ज्योति और रियांश का।

0: गाने के साथ ही आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आगे दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रॉड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार ईवी से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं आज शाम 5:33 और शाम 6:30 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल से ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:21 पर, जिसमें आज आप सुन सकते हैं ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के समय का सदुपयोग, इस पर सामयिक चर्चा। इसके अलावा बुंदेली समाचार और लोकगीत। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा, इसका प्रसारण होगा आज रात 8:00। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे 8:35 पर और रात 9:30। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ये थे आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3:42 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम DTH पर जारी है।

साथी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथी DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत पुरस्कार तथा 1 ज्यूरी पुरस्कार शामिल है। मेरा युवा भारत को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इस अभियान ने एक सप्ताह में ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सबसे अधिक उपयोगकर्ताओं का खिताब हासिल किया है। इसमें 3,90,000 से अधिक प्रतिभागियों ने क्विज को पूरा किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की प्रतिभाशाली बेटी सुश्री दीक्षा की कला को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिलने पर बधाई दी है। दीक्षा ने केवल 22 मिनट में 8 मिलीमीटर आकार की चने की दाल के 12 दानों पर ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर असाधारण कला का प्रदर्शन कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। और राज्य शासन की स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण आवेदनों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वैच्छिक स्थानांतरण के आवेदन 3 जून से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी, आज की युवाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: आज की इस खूबसूरत शाम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कान और कुछ खास पल। आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आज का आपका रेडियो दोस्त अनमोल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता। उम्मीद है आप सभी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अब वक्त है थोड़ी सी राहत का और कुछ प्यार भरी बातों का और शानदार संगीत का।
0: बिल्कुल, दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का ये समय अपनेपन और सुकून।

0: वापस स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी। अंकिता, कभी कभी लगता है ना, पहले मौसम कितने अच्छे हुआ करते थे। पेड़ों की वो ठंडी ठंडी छाव, साफ हवा और बारिश की वो खुशबू।
1: लेकिन अब सब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हर जगह प्रदूषण, प्लास्टिक और कटते हुए पेड़ दिखाई देते हैं।
0: और सबसे हैरानी की बात ये है कि इंसान खुद ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है और फिर उसी खराब माहौल की शिकायत भी करता है।
1: हाँ और क्या, हम खुद के स्वार्थ में भूल जाते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी तो जीवन भी मुश्किल हो जाएगा।
0: अब आज गर्मी हर साल बढ़ रही है, बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं पर्यावरण के बिगड़ने का असर है।
1: पर पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करके हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बदलाव भी ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है।
1: और दोस्तों, आज से हम सब मिलकर एक छोटी सी कोशिश जरूर करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी साफ और सुंदर वातावरण मिल सके।
0: साथियों, इसी वादे के साथ अब कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों

0: दोस्तों, प्रेरक व्यक्तित्व के अंतर्गत हम हर बार एक आइडियल पर्सनालिटी के बारे में आपसे बात करने आते हैं और उनके जीवन से जुड़े महान कार्यों को जानकर उससे प्रेरित होकर उनको याद करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, और आज हम आपसे बात करने आए हैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। आजादी की राह, सेवा की चाह, अमृत कौर की यही पहचान है।
0: इनका जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे और इनकी प्राथमिक से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा भी इंग्लैंड से पूरी हुई थी।
1: लेकिन संपन्न परिवार से होने के बाद भी अमृत कौर ने अपना जीवन सादगी से जीना चाहा। देश को स्वतंत्र कराने, सामाजिक विकास करने के लिए उन्होंने कई सारे कार्य किए।
0: वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थी और उनका कहना था कि शिक्षा को भी निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहिए।
1: महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया विमेन एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था।
0: इस तरह अपने राजनीतिक करियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने

0: कई बड़े पदों पर काम किया। 1947 में भारत की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया।
1: इतना ही नहीं, 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सम्मान हासिल करने वाली वे पहली एशियाई महिला थी और इस तरह सेवा, समानता और स्वास्थ्य ही अमृत कौर का संकल्प बन गया।
0: आजादी की राह पर उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी काम किया। 1930 में दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इस तरह लोगों को जागरूक करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अमृत कौर जीवन पर्यंत प्रयास करती रही।
1: साथियों, 2 अक्टूबर 1964 का दिन भले ही अमृत कौर के जीवन का आखिरी दिन रहा हो, लेकिन उनके सराहनीय कार्य और उनके योगदान को आज भी उतना ही याद किया जाता है।
0: इन्हीं बातों के साथ आइए दोस्तों, आप सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को। उरी फिल्म से शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाज में।

0: अंकिता, आज मैं बहुत खुश हूँ।
1: क्यों?
0: क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब से फर्स्ट सैलरी जो ली है।
1: अरे वाह अनमोल, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आज तो तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ रही होगी।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता, खुद की मदद करके किस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। छोटी छोटी जरूरतों से लेकर बड़ी बड़ी आवश्यकताओं तक जब आप अपने परिवार पर निर्भर नहीं होते बल्कि दूसरों का सहारा बनते हैं, तब ये फीलिंग ही कुछ और होती है।
1: सही कहा अनमोल, आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक्टिव है। वो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य के लिए जागरूक भी है। किसी कार्य को करने से क्या फायदा क्या नुकसान है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में है और इससे जुड़कर किस तरह हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और रोजगार भी किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बातों का ध्यान आज हमारे देश का नागरिक रखता है।
0: आज वो खुद की सहायता के लिए पूरी तरह तैयार है। बिना किसी सहारे के स्व सहायता से व्यक्ति स्वावलंबन की ओर बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की जागरूक होती महिलाएं भी घर के साथ साथ बाहर निकलकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं।
1: और दोस्तों, इस राह में सरकार के कई प्रयास जैसे रोजगार योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे विकास के कार्य भी जारी हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी खुद की मदद करना चाहते हैं और अपने साथ दूसरों को जागरूक कर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है।
1: और उम्मीद है आप सभी इस क्षेत्र में एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आइए अब सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म से

0: दोस्तों बातें तो अभी और भी हो सकती थी, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अलविदा कहने का समय हो चला है।
1: लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन।
0: और साथियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जिसका उत्तर है प्रशांत महासागर। साथियों उम्मीद है आज की ये शाम, हमारी बातें और संगीत की ये पल आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर छोड़ गए होंगे।
1: जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी कुछ पल अपने लिए चुरा लेना भी जरूरी होता है, और हमें खुशी है कि आपने उन पलों में युववाणी को शामिल किया।
0: साथियों हम फिर लौटेंगे नई शाम, नई धुन और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आपकी रेडियो दोस्त अनमोल द्विवेदी
1: और आपकी रेडियो दोस्त अंकिता को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी। आज की युववाणी आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथोनी का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नसीब से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, सुनते हैं।

फिल्म नसीब के बाद अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की। संतोष आनंद ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: कवि हेमंत देवलेकर।
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक हैं, समाचार हैं, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। और प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सके।
4: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए लुत्फ उठाते हैं सदाबहार गीतों का। पहला गीत हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से किशोर कुमार की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

आशा भोसले और मन्ना डे के गाए फिल्म काला बाजार के इसी गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर अब आपके लिए है संस्कृत में समाचार।

0: वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपं ईरान देशं विरुद्ध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरुत्तुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राबृढः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला संबंधानां विविधाः पक्षाः समीक्षिताः। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेशः औषधि निर्माणं स्वास्थ्य सेवा परिवहनं तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारस्य उपायाश्च चर्चिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् रुद्रेन्द्र टंडनः प्रोक्तवान् यत् द्विपक्षीय वार्ताः उभयोः देशयोः संबंधं सुदृढीकरोति।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully?
0: डेल्सी रोड्रिग्स महाभागा द्विदिवसीय भारत यात्रायै ह्यः नवदिल्लीम् आगता। अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोः देशयोः आर्थिक ऊर्जा क्षेत्रयोः सहयोगः अधिकः सुदृढः भविष्यति इति अपेक्षते। विदेश मंत्री एस जयशंकरः वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदय सह सममिलत् द्विपक्षीय सहयोगस्य सुदृढीकरणे प्रदत्तं बलम्। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री एस जयशंकरः अद्य प्रातःकाले वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महोदय सह सममिलत्। अस्मिन् अवसरे उभयोः देशयोः संबंधानां सुदृढीकरणं विविधेषु क्षेत्रेषु सहकार विस्तारश्च चर्चितः। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता तथा केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मंडलस्य पूर्वाध्यक्षः पहलाज निहलानी अद्य मुंबई नगरे दिवंगतः। सः 76 वर्षीयः आसीत्। चलचित्र निर्मातृत्वेन असौ हथकड़ी इति चलचित्रेण स्वकार्य जीवनस्य आरम्भं कृतवान्। इल्जाम इति चलचित्रेण अभिनेत्री गोविंदाय प्रमुखस्य अवसरस्य प्रदानस्य श्रेयः अपि तस्मै वर्तते। 15-2000 वर्षे सः केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन मण्डलस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिं डोनाल्ड ट्रंपं ईरान देशं विरुद्ध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरुद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। एषः चतुर्थः अवसरः अस्ति यदा प्रतिनिधि सभा ताभिः युद्धसम्बद्धाभिः शक्तिभिः सीमिता भवेत् इत्यर्थं प्रयासं करोति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतु विभागेन अद्य केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्राबृढः आगमनस्य पुष्टिः कृता। अस्मिन् वर्षे वर्षर्तोः वृष्टिः सामान्यकालात् त्रिदिवस विलम्बेन आगता। विभागेन नवम जून दिनांक पर्यन्तं केरल राज्ये माही क्षेत्रे च कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। अस्माकं वार्ताहरस्य अनुसारेण राज्यस्य विविधेषु जनपदेषु तीव्रा वर्षा प्रवर्तते येन जनजीवनं प्रभावितम्। गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्वयोगासन क्रीडा

0: Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
1: Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Roz ki tarah aaj bhi hum aapke liye desh videsh ki khabron ko lekar hazir hain. Pramukh samacharon ka हम विश्लेषण भी करेंगे. खास खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे. उदयन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं लालिमा अनीजा डैंग.
0: थैंक यू अम्बरीश. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट. सेंसेक्स गेन्स 14 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,417. Major Asian stock markets end with losses and global crude oil price slip.
1: Gharelu share bazaar sapat band hue. Sensex mein 14 ank ki badhat rahi. Nifty 23,417 par sthir raha. Pramukh Asiai share bazaar giravat ke saath band hue aur vaishvik kacche tel ki keematon mein giravat darj ki gayi.

0: And friends, before we go any further, here's a disclaimer for all of you. All the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 14 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक बढ़कर 23,417 पर स्थिर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार ने प्रमुख सूचकांकों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The BSE Sensex rose 14 points to close at 74,360. The NSE Nifty added 11 points to settle at 23,417. The broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices, with the mid-cap 100 and small-cap 100 indices gaining around 0.5%. Earlier today, markets opened lower amid weak global cues and ongoing geopolitical tensions in West Asia. Both indices remained range-bound for most of the session, oscillating between gains and losses before ending the day marginally higher.
1: आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार गिरावट के साथ खुले। दोनों सूचकांक सत्र के अधिकांश समय सीमित दायरे में रहे। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुए।
0: In the sectoral indices at the BSE, 19 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, consumer durables rose over 1.9%, capital goods climbed 1%, and telecommunication advanced by 0.8%. Conversely, metal emerged as the biggest drag, dropping over 0.8%, followed by commodities and IT, which shed 0.5%. Meanwhile, mid-small private banks quality tilt index also dropped over 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,244 companies advanced, 1,940 declined and 177 remained unchanged.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस में लगभग 1.8% की गिरावट आई, बजाज फिनसर्व में 1.1% से अधिक की गिरावट आई और अल्ट्रा

0: टेक सीमेंट में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत टाइटन के शेयरों में 3.4% से अधिक का उछाल आया। इटर्नल के शेयरों में 2.9% की वृद्धि हुई और आईटीसी के शेयरों में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई। और रुपए का हाल भी जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपए में गिरावट दिखाई दी और यह 9 पैसे कमजोर होकर 95.79 रुपए पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.21 पर कारोबार कर रहा था। उदयन जी, क्या कहेंगे शेयर बाजार के आज के हाल पर? काफी स्टैटिक रहा, कोई खास चेंज नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को अभी आगे नहीं जाने दे रहे?
1: तो जैसे कि पहले कई हफ्तों में रहा है और आज भी और मेरे ख्याल से आगे चल के भी कई हफ्तों तक मुद्दा तो वही है जो संघर्ष हो रहा है खाड़ी में। तो जिस दिन हेडलाइंस आपकी सुर्खियां बेहतर होती हैं तो ऑप्टिमिज्म आता है। आप देखेंगे कच्चे तेलों के तेल के दाम गिरते हैं, उससे एक बाउंस मिलता है स्टॉक मार्केट चारों तरफ और हमारे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट।
0: उस तरह से देखें तो अभी तो काफी पॉजिटिव है कि तेल के दाम भी घटे हैं और लेबनान और इसराइल का समझौता भी हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया।
1: वो उससे थोड़ा सा बाउंस मिला, फिर आके वो कंसोलिडेट हुआ, तब भी एक मार्जिनल पॉजिटिव टेरिटरी में जाके खत्म हुआ। तो ये वो ओवरराइडिंग कंसर्न है क्योंकि वहाँ पे कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और चिंता यही है कि उसकी वजह से क्या मुद्रा स्फीति पे को असर होगा। मैं मार्केट्स की मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ और उसे डिमांड में क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में जो लाभ है उसका जो हिस्सा है उसके ऊपर कितना डेंट लगेगा। तो ये सब चिंताएं आके प्ले करती हैं। और इसके अलावा जब भी कोई और दूसरी तरह की हेडलाइन आ जाती है, जैसे एक टैरिफ प्रपोजल यूएस की तरफ से उसका हेडलाइन एकदम से आ गया तो उसमें एक एडिशनल प्रेशर होता है। और अभी अमरीश जी ये है कि कई चीज़ों में क्योंकि रुपी डॉलर का जो सामंजस्य है, जो वैल्यू है उसका, जो एक्सचेंज रेट चल रहा है क्योंकि वो सुर्खियों में है, तो कोई भी हेडलाइन अगर रुपए के मूल्य को प्रभावित करता है तो वो भी आके आपके सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे मौकों में करेंसी मार्केट से शुरू होता है डेवलपमेंट और वो जाके इम्पैक्ट कर देता है आपके इक्विटी मार्केट में, नेचुरली वो डेट मार्केट में भी चला जाता है।
0: जी, जी।
1: पर वहां से शुरुआत वहीं से होती है।
0: लेकिन जैसा आपने कहा तो अभी करेंसी और रुपए की जो हालत है वो तो मेरे ख्याल से अभी इसी तरह से चलेगी तो
1: जी
0: फिर उसका क्या इम्पैक्ट, फिर इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अभी हमें कोई खास उम्मीद आने वाले समय में भी नहीं लगानी चाहिए।
1: देखिए जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो अनलाइक अ फिक्स डिपॉजिट, मान लीजिए 3 महीने का फिक्स डिपॉजिट, आपको मालूम है कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और पैसे मिल जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो उसके पीरियड्स होते हैं, तो स्टॉक मार्केट्स में अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उस तरीके से आप देखें तो कम अवधि में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। अगर 100 रुपए लगाते हैं
0: जी,
1: पर वो जैसे ही आप जितना जितना टाइम आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो फ्लक्चुएशन है, जो कांटा हिलता है, वो कम कम कम होते होते होते बहुत कम होता चला जाता है। स्थिर कभी नहीं होता, ऊंचे नीचे ऊंचा नीचे होता है। और इसीलिए पर वो जिसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये पाया गया है कि आप अगर सब्र करेंगे तो आपके आपको जो फल मिले, फल तो मिलेंगे ही और वो फल मीठे भी होंगे।
2: एंड उदयन, आई थिंक द जिस्ट ऑफ इट इज दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज दीज डेज।
1: नो, इट्स बेटर टू हैव न्यूज इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉट्स ऑफ नैस्टी सरप्राइजेस। इट्स गुड टू हैव न्यूज। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग न्यूज व्हिच यू आर सपोज टू गेट, देन यू कांट ऑल्सो इन्वेस्ट बिकॉज इन अ हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड टू से अ फिक्स डिपॉजिट और से बॉन्ड्स, यू विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन। ऑफकोर्स इन बॉन्ड्स यू मार्केटेबल डेट प्रोडक्ट्स यू नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनलाइक अ फिक्स डिपॉजिट वेयर देयर इज अ डिपॉजिट इंश्योरेंस एटसेट्रा, वी वॉन्ट गो देयर। सो यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट हैव द कन्विक्शन। So, more things that you have seen basis of which you are taking an investment decision. And now, a lot of people think that investment decision is all about buying and selling. Sometimes it can be about doing nothing. And you say that, okay, I will do this only when this happens. That is also a decision.
2: Mm.
1: So it's like a verb. So it's a state of being is also counted as an action, a verb. So this is something we need to remember. And as I mentioned that, you know, typically Larima, what happens is the fluctuation in the value of investments tends to be more for stocks and stock related equity funds, hybrid funds, it will be lesser for hybrid funds than say a debt investment market, which is linked to the market. And they last for debt investment, it lasts for smaller periods. Magnitude is more for equities and it lasts for a longer period. If we don't know where we are going to swim, then we are going to have a problem. So if it's a baby pool, I know what to expect. If it's a deep pool and it's a big water body, then I should be mentally prepared where I'm getting into. So it's important that our expectations are also realistic. We should know where we are getting into. So in a highway, you cannot be doing the, dealing as a motorist or a pedestrian the same way as, a bylane.
2: Mm-hmm.
1: So one has to be little mindful. And I don't think there are reasons to be concerned. This is part, India has gone through these phases and they are part and parcel now of equity investing. And it's important that we learn to be comfortable in our skin.
2: Mm-hmm.
1: Because we are by far the it's a cliche now, the fastest growing large economy.
2: Yeah.
1: Now who but Indians should benefit from it? And you can only benefit if you stay invested in the market. And it's not about, you may not decide to buy fresh shares or units, etc., or may decide to buy small amounts. That's fine. But to get scared and go away or stop it altogether and, look at all kinds of crazy advice is not a smart thing to do.
2: Are our strong fundamentals in the economy, are they overriding to a great extent and kind of offsetting the shadow of geopolitical tensions at some point?
1: Oh yes, absolutely. And that's I'm so glad that you're pointing this out, because some of the commentary which is coming out of so-called market watchers and gurus in our country,
2: mm-hmm,
1: seems to ignore the fact. See, this resilience is remarkable, because people of the country, this is the first time, the first period, say maybe 7-8 years, where a lot of people have gone and participated. So it's becoming a counterweight to all this. Things would have been far more difficult if such a large number of Indians had not invested in the market and continue to remain optimistic.
2: Mm-hmm.
1: So that's the most important part. If they were not optimistic, then things would have been a very different ball game. But and that's where they're also rooted to reality. So I'll doff my hat to these investors, because they see what foreign investors are not being able to see. But to be fair to foreign investors, they are chasing higher returns.
2: Mm-hmm.
1: So they'll look at India,
2: mm-hmm,
1: and they'll look at the currency, they'll look at everything, and they'll look at somewhere else, say in US debt markets, where at the lower risk they can make their money grow. So they are looking at a different point of view, we are looking at a different point of view. We are not wrong. For us to grow very the way we deserve to grow, we need foreign participation. But minus them, it's not that as if we won't grow. It's just that if we want to become a 4x4 wheel drive, then we need their participation.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Right.
0: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के अधिकांश बाजारों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.8% से अधिक, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.5%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स 1.4%, जापान का निकेई लगभग 1.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% से अधिक गिर गया. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक सूचकांक 0.9% से अधिक और जर्मनी का डेक्स 0.3% बढ़ा. जबकि लंदन का फुटसी सूचकांक

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा

0: व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है, साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा विभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन सकते हैं

ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। और अब हम नजर डालते हैं कल यानी 5 जून शुक्रवार को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुने आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे। 12 बजे का समय है आपकी फरमाइश का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिस्किया की 10वीं कड़ी। 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम और युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2:00 PM, शाम 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर और रात 9:45 पर। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा कल दोपहर 2:30 पर और रात 10 बजे। 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 8 बजे आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम खेल जगत, इसमें आप सुनेंगे वार्ता फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026, वार्ताकार होंगे नवेद इशरत। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला के अंतर्गत पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन, ताल होगी रूपक ताल। और ये तो थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर गांधी चर्चा, 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, 10:05 पर आप सुन सकते हैं महिला कार्यक्रम महिला संसार और 10:30 पर सुबह आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतौनिया का तबला वादन जिसमें आप सुनेंगे ताल पंचम और साथ ही सवारी ताल। और कल शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा होगा। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले आज और कल के मुख्य कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकलसेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर

0: के स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस यादे बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुख करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय ITI में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में BCOM इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर।

0: जय जवान जय किसान।
1: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया और बहन का गीता बहन और
0: मनीषा बहन की राम राम, राम।
1: और देखो भैया अपन देख ही रहे हैं कि मौसम को बुझाज कैसे चल रहा है।
0: और का बहन सही कह रही हैं आप।
1: अपन देख रहे हैं कि देखो अभी थोड़े पहले ही बरसात हो गई होती है, मौसम कैसे बदल गया हो तो, और हाल ही में गर्मी
0: हो लगी और का।
1: तो अपन और उनको जो बदलत भाई मौसम में अपने सेहत को
0: ध्यान रखना चाहिए।
1: कैसे कि जिस समय ऐसा है जब मुलक सी पेट संबंधी बीमारियां दूषित पानी पीवे से
0: हो सकते हैं सही,
1: और जही दिनों में पानी की तंगी भी होते तो अपन को जितने पानी जीते हैं जहाँ से मिलाते हैं भर लेते
0: हैं। और का
1: तो कहने का मतलब ये है कि पानी देखभाल के भरें, और भरवे के बाद यदि उबाल के छान के ठंडा करके मटके में भर के पिए तो बहुत ही अच्छी बात।
0: सही कह रही बहन, क्योंकि बरसात में तो बहुत बीमारी अपने हो सकती है।
1: और कहा है कि फल जो मिलते हैं बाजार में वो कटे भाई हों गले भाई हों या खुली भाई खाद्य सामग्री हो तो वो नहीं खाने चाहिए।
0: और कभी सही कह,
1: देखभाल के खाएं। और सिंगी का है अपने पशुओं को भी ध्यान रखें,
0: और
1: उनको भी मौसम की बीमारियों से बचाएं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपन जो करवे जा रहे हैं आज अपने भैया से वो है खेत बचाओ अभियान
0: के बारे में।
1: कैसे कि जे अभियान 1 जून 2026 से चालू होके 30 जून 2026 तक नो चलाए जाएगा।
0: और
1: जाको जो उद्देश्य है वो का है कि जन जागरूकता लाना लोगों में खेती बाड़ी के बारे में। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा शुरू ये अभियान है जो एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन है, और जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से खराब हो रही मट्टी की सेहत को सुधारना, खेती की लागत को कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।
0: और का बहन, किसान भैया को सरकारी योजना को लाभ दिलाना है, और केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जाकी शुरुआत मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में जाकी शुरुआत करी गई है। और बहन जो राष्ट्रव्यापी अभियान 1 जून 2026 से 30 जून तक पूरे देश में संचालित करो जाएगा। और जाको मुख्य उद्देश्य पिछले कसु दशकन में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति बाकी गुणवत्ता में कमी आई है, वो खेत बचावे को अभियान जो लक्ष्य जारी करवो है। कह के बहन जैसे उपजाऊ क्षमता बढ़त है वाको बचानो है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। अपन देख ही रहे हैं कि अपने किसान भैया बहनन ने उत्पादन अच्छो लेवे के लाने लगातार अन्ना धुन रासायनिक उर्वरक को इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से भाई भूमि की जो मट्टी है बाकी सेहत बिगड़ गई
0: है।
1: उसमें जो मौजूद प्राकृतिक तत्व थे पोषक नष्ट हो गए, भूंजी एक तरह से बंजर सी हो गई, उत्पादन भी कम होगा और लागत बढ़ गई, भूमि की जल धारण क्षमता भी कम हो गई, उत्पादन प्रभावित होने को। तो जे सकई बातन को ध्यान में रखत भाई जी अभियान चलाओ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जी बात समझ जाए, खास करके भाई किसान भैया बहन कि अब जो है अपन और उनको जैविक खेती करना है, प्राकृतिक खेती करना है, और रासायनिक उर्वरक पे अपनी जो निर्भरता है बाको कम करना है, धीरे धीरे कम करत भाई पूरी तरीका से जैविक खेती को अपनाना है। और जाके लाने देखो मुलक सी योजनाएं चल रही है सरकारी जिसमें किसान भैया को लाभ मिलता है।
0: और का बहन
1: जे योजना के अभियान के अंतर्गत भी ऐसे किसान भैया बहन जो अपना पॉली हाउस नहीं बना सकत, ग्रीन हाउस नहीं बना सकत, तो इनके लाने जो है सब्सिडी दी जा रही, अनुदान दिया जा रहा है कि वो कृषि यंत्र भी ले सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तकनीकी अच्छी तकनीकी को इस्तेमाल करके भाई खेती को लाभ
0: बना सकते हैं।
1: तो हमारे भैया से यही कहना है कि वो भी जे अभियान से जुड़े और जे अभियान के उद्देश्य को सार्थक बनाने में अपन सहयोग करें।
0: सही कह,
1: और देखो जय के बाद में अपन बात करते हैं अपने भैया बहन से ऊर्जा की, है ना, कि आजकल अपन देख रहे हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा देखो अपन समय के लाने जरूरत होती है, अपन और उनको चलावे के लाने भी ऊर्जा की जरूरत है, अपन को ऊर्जा मिलता है भोजन से, वैसे ही पेड़ पौधन को ऊर्जा की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो अपन भोजन बनाते हैं
0: बिना
1: ऊर्जा मिलता है। सगे जीव जगत में समय को सुचारू रूप से चलावे के लाने ऊर्जा की जरूरत होती है। और देखो भैया बचत तो बचत ही
0: होती
1: है, पैसे की बचत हो
0: चाहे ऊर्जा की।
1: और आज अपन देख रहे कि ऊर्जा की जरूरत तो बढ़ गई है बाकी पूर्ति के संसाधन बहुत ही कम है।
0: और
1: देखो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो जाके लाने जरूरी है कि हम जो निर्भरता को कम करते हैं वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को चुने, जिनमें सबसे अच्छा स्रोत जो है वैकल्पिक वो है सौर ऊर्जा।
0: और का बहन सही कह रही है आप, और आजकल सौर ऊर्जा को बहन बहुत चलन हो गया है, हर यानी बहुत

0: लोग हैं जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जो अपने इतना लगवा रहे हैं,
1: अपन देख रहे हैं कि सोलर प्लांट लग रहे हैं,
0: और
1: खेतन में सोलर प्लांट लग रहा है, घरन में सोलर प्लांट लग रहे हैं, जाके अलावा इंडक्शन चल गए हैं,
0: और कब है?
1: और अब देखो अपन देख रहे हैं कि कितने दिक्कत आ रही है,
0: और को
1: सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो जो सभी चीजें को अपन ध्यान में रखेंगे, जैसे क्या है प्रदूषण भी फैल रहा है,
0: और कब है?
1: तो प्रदूषण भी कम हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, संतुलित हो, अपनी सेहत भी अच्छी होगी,
0: तो
1: जाके लाने मुलक जरूरी है कि अपन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को चुने, जिसमें लागत भी कम आएगी और अपन जो है पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, अपन स्वस्थ रहेंगे। अब अपन देखें तो देखो भैया डीजल पेट्रोल दिनों दिन महंगा
0: महंगा हो जा रहा है,
1: और फिर प्रदूषण भी बढ़ाते हैं,
0: जैसे
1: मुलक सी बीमारियां भी हो जाते हैं,
0: और
1: जो बात को भी ध्यान रखें कि जाको स्टोर मतलब इकट्ठो करके नहीं रखें, जो सोचिए कि भैया चार सिलेंडर इकट्ठे करके रख लो कल पता नहीं मिलेगा कि
0: मिलेगा,
1: ऐसा नहीं करें, जब आपको जितेक की जरूरत है आप सिलेंडर ले लें, पेट्रोल डीजल का भी सोच समझ के इस्तेमाल करें, एक जगह पर चार लोग जा रहे हैं तो भैया एक ही गाड़ी से चले जाएं,
0: चले जाएं
1: नेक नेक दूरी पे गाड़ी से जावे की कोई
0: जरूरत नहीं है, सही कह रही
1: हैं, अपन देख रहे की बैटरी से चलने वाली गाड़ियां चल गई
0: हैं,
1: तो जिनको उपयोग करें, हो सके तो सबसे अच्छी बात है कि आप पैदल चलें,
0: पैदल चलें, बस अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपको,
1: साइकिल से चलें, पैदल चलें, और अगर अपन कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, अपन को पंखा की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, तो हाल ही अपन बंद कर दें, और अपनी बहनें क्या कर रहे थे, कछु कछु बहनन की आदत होते हैं, रसोई घर में काम करवे गए और गैस चालू पहले कर दो, कढ़ाई पहले धर दी, अभी सब्जी भाजी कटी नहीं है,
0: और का बहन
1: क्या अपन ने खाना बनाना रख दो, अब हमें बहुत सारा पानी डाल
0: दो, और
1: ज्यादा गैस लग रही, आप प्रेशर कुकर में खाना बनाए,
0: ऐसे
1: पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होंगे और खाना भी कम समय में और कम ऊर्जा में बन
0: जाएगा,
1: छोटी छोटी बचत है जो अपन करके चलेंगे तो ऊर्जा की बचत
0: होगी,
1: तो खास करके अपन छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी इनको भी समझाना चाहिए, पढ़े लिखे वाले को भी,
0: और का बहन सही कह रही हैं आप, उनके लाने समझाना चाहिए कि भैया ऊर्जा की अपन कैसे बचत कर सकते हैं, अपने बच्चन को समझाएं तो वे अपने वही हिसाब से अपने बच्चा बाकी बचत करेंगे,
1: ऐसे कि छोटे होते हैं वो बड़ों का अनुसरण
0: कराते हैं, सही कह रहे हैं,
1: अच्छा अपन काम कर रहे हैं तो बच्चे देखते सीखेंगे,
0: और का
1: तो बचपन से ही बिना बचत की आदत डालें, जे नहीं कहें कि भैया खूब आ रहा हो तो खूब इस्तेमाल,
0: और का इस्तेमाल
1: पानी हो या आपका ईंधन हो या कोनो भी पैसा रुपया हो, हर चीज की बचत करना बच्चों को सिखाना
0: चाहिए,
1: मितव्यता से अगर खर्च करेंगे तो अपन आवे वाले कल को भविष्य को जो है सुरक्षित
0: कर सकते हैं, सही कह रहे
1: हैं, आगे वाली पीढ़ी को अपन जो सौगात देंगे तो का देंगे,
0: का देंगे, सही कह रहे हैं,
1: जरूर ध्यान रखें और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतन को उपयोग करें, कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जितने हो सके आप बाकी बचत करें,
0: बचत करें, और का बहन सही कह रहे हैं,
1: हर तरीके से अगर अपन बचत करेंगे तो एक ना एक दिन निश्चित तौर पर ये बचत अपने काम आएगी,
0: और
1: अपन जो भी देख रहे हैं कि भैया आजकल का है मोबाइल पे लगे रहते हैं,
0: सही कह रही हैं,
1: की बैटरी चार्ज करने में घंटों लगे रहते हैं,
0: और
1: एसी चलाते हैं, तो ये सब चीजें अपने स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालते
0: हैं, और तो का अपने जरूरत के हिसाब से ही अपने हाँ, इस्तेमाल करना चाहिए,
1: बिल्कुल सही, खाना पकावे के लाने जा विद्युत उत्पादन पानी को तापमान के लाने सभी के लिए ऊर्जा को
0: उपयोग
1: प्राकृतिक ऊर्जा को अपन जो स्रोत है वो अपनाना चाहिए, और देखो बहन अपन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बचत छोटी हो
0: चाहे बड़ी हो
1: आपे वाले कल के लिए अपनी वो सुरक्षा निधि होते
0: है,
1: तो बिना संभाल के रखें और मितव्यता के साथ खर्च करें, जो बात की सिंगे देखो मनीषा बहन अब धीरे धीरे बेरा हो रही है कि अपन चौपाल से चलें,
0: और का बहन तो
1: सगा भैया बहन का जय गीता बहन और
0: मनीषा बहन की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सगे भैया बहन को एक बार फिर से गीता बहन
5: और मनीषा बहन की राम राम, राम।
4: और देखो भैया, अपन जो बात कर रहे थे अपने ऊर्जा की बचत की, और अब अपन अपने कार्यक्रम में भैया बहन से बात कर रहे थे यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की।
5: और का बहन सही
4: कैसे के जी, अपन सभी जानत है कि अपने किसान भैया बहन खेती कर रहे थे,
5: और का
4: सिंगी अतिरिक्त आमदनी के लाने फलदार बाग बगीचा भी लगाते हैं, कछु मसालन की खेती कर रहे थे तो कछु औषधीय पौधन लगाते हैं,
5: और का
4: और सभी चाहते हैं कि वो जो कुछ भी फसल ले रहे हैं वासे भी नए उत्पादन अच्छो मिले,
5: और का
4: सो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जय मनसा है कि खेती अपने किसान भैया बहन के लाने लाभ को धंधो
5: बने। सही कह रही,
4: जीरो बजट की खेती हो, प्राकृतिक खेती करी जाए जिससे उत्पादन भी अच्छो मिलेगा,
5: और
4: सिंगे जो है भूमि की सेहत भी अच्छी
5: होगी, और
4: पर्यावरण संतुलित होगा, और अपन को जो है पौष्टिक जो आहार मिलेगो, और सिंगे का है रासायनिक मुक्त खाद्य पदार्थ
5: मिलेंगे,
4: सब जी जगत पशुन के लाने जे बहुत ही सुरक्षित
5: रहेगा।
4: सो जय के लाने मुलक सी ऐसी शासकीय योजनाएं भी अपने किसान भैया बहन ने चलाई, मतलब इनके लाने चलाई गई,
5: और
4: क्रियान्वयन भी
5: क्रियान्वयन
4: किसी को लाभ लेके वो अपने पारिवारिक आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बना सकते। तो बहन जय क्रम में शुरू भाव राष्ट्रीय बागवानी मिशन,
5: और का बहन जो भारत सरकार द्वारा चलाओगा, जो
4: 2005 और 6 में शुरू करी गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जी को
5: मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों की जो फसल सब्जी है, फूल है, मसाले हैं, औषधियां हैं, इनको उत्पादन बढ़ानो है, और अपने किसान भैया बहन की आय में बढ़ोतरी करवे के लाने, इनके सिंगई ग्रामीण क्षेत्रन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
4: हाँ बिल्कुल सही कह रही, और बहन बागवानी फसलों की उत्पादकता को उन्नत किस्म के बीजों और वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ानो है, जिसे अपने किसान भैया बहन का जो वित्तीय सहायता सब्सिडी की सुविधा भी मिलता है।
5: और
4: जैसे अपन बात कर रहे थे कि कौन भैया है बहन है जिनके पास पॉली हाउस बनाने के लाने, ग्रीन हाउस बनाने के लाने, ड्रिप सिंचाई के लाने, ये वर्मी कंपोस्ट कोल्ड स्टोरेज नहीं होती, तो ये सगाई सुविधाएं जो है इन्हें देने और जाके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के माध्यम से खाद एवं पोषण की सुरक्षा भी मिलत है,
5: और
4: जिसे बागवानी उत्पादन बढ़त है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वन से भरपूर फलों और सब्जियों की उपलब्धता बढ़ जाते हैं, जिससे देश में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो जाते
5: हैं।
4: तो अपन और उनको भी जो बात को ध्यान रखना चाहिए, और जिसे अपने जो ग्रामीण भैया बहन है बिनके काजे और युवाओं के लाने, अपने ग्रामीण बहनन के लाने रोजगार की संभावना भी बढ़ जाते है।
5: और
4: कैसे की राष्ट्रीय बागवानी मिशन श्रम प्रधान है, NHM गतिविधियों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध बढ़ते है
5: और
4: उपलब्धता बढ़ाते है रोजगार की। सुबेरो यदि आप अब तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन से नहीं जुड़े तो देर करे बिनो जल्द ही जी मिशन से जुड़ के ये उद्देश्य को सार्थक बनाने में पाओ सहयोग
5: दे। सही कह रही
4: है। और देखो मीनाक्षी बहन, अपन ने जो बात तो कर ली है, अब अपन कछु बात करते हैं अपने भैया बहनन से काहे की खेती किसानी की। अपन खेती किसानी में देख रहे हैं कि अब जो समय आ गया है वो चल रहा है अनाज भंडारण को।
5: सही कह रहे हैं।
4: अगर अपन अनाज को भंडारण सही तरीका से नहीं करत तो मुलक अनाज जो है अपना हर साल खराब
5: हो जाता है।
4: जैसे अपने देश में अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है,
5: नुकसान होता है, सही
4: अपन देख रहे हैं। अपन घर में भी जो अनाज छोटे स्तर पे रखते हैं अपने इस्तेमाल के लाने, अगर अपन वो भी सुरक्षित नहीं रखा, सही तरीका से नहीं रखा, तो हमें कीड़ा लग जाते हैं, अपना अनाज खराब हो जाता है,
5: और का बहन पूरी साल नहीं चलता है।
4: और जब अपन को बड़े स्तर पे अनाज को भंडारण करना है तो वाकिलाने मुलक बातन को ध्यान भी रखना पड़ता है।
5: सही कह रहे
4: हैं। तो अपन को कौन कौन सी बातन को ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपन सुरक्षित अनाज भंडारण कर सकते हैं, जय के लाने आज हम अपने भैया बहन के लाने सुनवा रहे जय पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जी को विषय है वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण। वार्ताकार भैया है श्री शैलेंद्र सिंह गुरैया जी और जिनसे बात कर रहे हैं भैया SS चौधरी। तो चलो सुनाते हैं जय पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता।
6: किसान भाइयों, अन्न जीवन का प्रतीक, जिस तरह से हम अनाज बड़ी मेहनत के साथ पैदा करते हैं उसी तरह से हमें अनाज का भंडारण भी वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कीड़ों पतंगों, नमी या दूसरे कारणों से नष्ट होता है और हर साल ये होता है। तो यदि ये अनाज की बर्बादी ऐसे ही जारी रहती है तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण कैसे किया जाए, किन किन प्रमुख बातों पर ध्यान देना है किसान भाइयों को, इन्हीं सब बातों की विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे बीच में है श्री शैलेंद्र सिंह गुरैया, सहायक संचालक कृषि जिला शिवपुरी। तो गुरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार आपको।
7: नमस्कार चौधरी साहब, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
6: अब जबकि हमारे रबी फसलों की कटाई हो चुकी है, गहाई होने के बाद अनाज हमारे घरों में आ चुका है, अब इसका भंडारण बहुत जरूरी है, तो भंडारण के लिए कौन कौन सी प्रमुख बातों पर किसान भाई ध्यान दें ताकि अनाज का सुरक्षित भंडारण हो सके।
7: बिल्कुल सही कहा, कटाई हो चुकी है और हमारे किसान भाई अधिकांश उनकी उपज को भंडारित कर रहे हैं अथवा मंडियों में विक्रय कर रहे हैं। मंडियों में विक्रय करने के पश्चात जो अन्न बचता है उसका हमारे किसान भाई भंडारण करते हैं। और चौधरी साहब, देखा अमूमन यह जाता है कि भंडारण में छोटी छोटी जो गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं या बड़े किसान हमारे जो करते हैं, जो बड़ी स्केल में अन्न का भंडारण करते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं, तो इसकी वजह से जो है छोटी छोटी गलतियों की वजह से 8-10% तक जो है अनाज देश भर में हमारा जो है भंडारण के दौरान खराब होने की स्थिति में पहुँचता है। निसंदेह रूप से जो है इसका प्रभाव जो है फूड चेन पे आता है और जो हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है सदैव। तो जैसा आपने कहा कि इसमें जो है किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो अनाज भंडारण के दो मूलभूत सिद्धांत हैं, है ना। उन सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत हम अपनाते हैं वो ये अपनाते हैं कि जब भी हमारा अनाज खलिहान से जब भंडारण तक पहुंचता है तो उस दौरान ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी प्रकार से जो है वो अनाज जो भंडारण गृह में पहुंच रहा है वो पूरी तरह से पेस्ट फ्री हो, कीट पतंगे व्याधियों से जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो वो। और दूसरा जो सिद्धांत इस पर काम करता है, वो दूसरा सिद्धांत ये काम करता है कि जिस भंडार गृह में उस अनाज को भंडारित किया जा रहा है वो भंडार गृह भी पूरी तरह से जो है कीट पतंगे और नमी आदि से जो है मुक्त हो। ये दो सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम जो है अन्न के भंडारण को करते हैं ताकि जो है अन्न को सुरक्षित लंबे समय तक रखा जा सके।
6: एक महत्वपूर्ण बात बताइए आपने कि भंडारण से पहले हमें ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस अनाज का हम भंडारण कर रहे हैं वो साफ सुथरा हो, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, अनाज कटा फटा ना हो, तो ये सब प्रक्रिया कैसे की जाएगी?
7: देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हम अनाज के भंडारण का एक प्रोसेस है वो एक आखिरी का प्रोसेस होता है। उसके लिए शुरुआत हम करते हैं जब हमारी खेती की शुरुआत हो रही होती है उस वक्त से। मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी रोगाणु, जो बीज जनित रोगाणु है, अगर फंगस इन्फेक्शन उसका जो है खेत में हो रखा है और उसको हम लार्ज स्केल पर जो है भंडारण के लिए लेके आ गए, तो जब नमी उसको मिलेगी तो वो और एक उचित वातावरण के अंदर जो है फैलेगा और अन्न को खराब करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, भंडारण के अंदर जो हमारा अन्न रहता है उसके खराब होने के 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि भंडारित अनाज में कितना मॉइस्चर है, वो एक चीज़ डिपेंड करती है। दूसरा रहता है कि भंडार गृह में ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है और उस ऑक्सीजन के साथ में जो है नमी कितनी है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है उसकी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो रहता है कि अनाज के जो भीतर का तापमान है वो तापमान कितना है। तो ये तीन प्रमुख कारण होते हैं जो अन्न के भंडारण को जो है और भंडारण में अन्न के खराब होने को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं।
6: हम बात करते हैं नमी।

0: क्योंकि नमी अनाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि अनाज में नमी होगी तो ऐसे भंडार गृह में जब हम अनाज को भंडारित करेंगे तो नमी के कारण जो है उसके ढेले बन जाते हैं और अनाज जो है खराब भी हो जाता है। तो नमी कितनी होना चाहिए
1: इसमें देखो ध्यान हमको रखना पड़ेगा कटाई के समय ही
0: जी,
1: कि जब हम फसल की कटाई कर रहे हैं उस अवस्था में नमी किसी भी सूरत में 14% से अधिक ना हो
0: जी,
1: 14% से कम होना चाहिए।
0: कटाई के समय,
1: ये कटाई के समय हमें विशेष ध्यान रखना है।
0: भंडारण के
1: इसके समय, इसके बाद बात आती है भंडारण करते समय। तो अन्न की गाही करने के बाद और जब भंडारण में हम ले जा रहे हैं जहां हमें उसको 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए भंडारित करना है, तो किसी भी सूरत में 8% से अधिक नमी अन्न के दानों में नहीं होनी चाहिए, लगभग 8% तक जो है।
0: पता चलेगा
1: इसको तो
0: पर्याप्त है।
1: हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है क्योंकि हमारे किसान भाई के पास अमूमन कोई ऐसा
0: यंत्र
1: नहीं होता। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि दाने को अपने दांतों के बीच में दबाकर जो है देखेंगे, और दाना अगर कड़क की आवाज के साथ टूट रहा है इसका मतलब उसमें नमी का प्रतिशत लगभग 10% से नीचे है
0: जी।
1: और अगर वो आवाज करते हुए नहीं टूट रहा है,
0: दबता है,
1: दब रहा है, अर्थात उसके अंदर नमी का प्रतिशत अधिक है, ऐसी अवस्था में हम उसको जो खलियान में ही तरपाल बिछा कर या घर के बाहर बरामदे में
0: सुखा लेना चाहिए,
1: तेज धूप के अंदर सुखा लेंगे और सूखने के बाद
0: तो भंडारण
1: करेंगे उसका जी।
0: अब जो हमारे भंडार गृह हैं, भंडारण से पहले भंडार गृह को किस तरह से कीटाणु रहित करें, फर्श कैसा बनाएं और फर्श से नमी हमारे बोरों में या भंडार गृह तक ना पहुँच सके, इसके लिए क्या करना होगा?
1: देखिए इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप अनाज का भंडारण भंडार गृह में कर रहे हैं तो उससे पूर्व जो है भंडार गृह को पूरी तरह से एक अवलोकन करना चाहिए कि भंडार गृह में किसी प्रकार का जो है कचड़ा, जाले, मकड़ियाँ है ना, या किसी प्रकार के कीट पतंगे तो नहीं है उसमें, किसी प्रकार की कोई कहीं से सीलन तो नहीं आ रही है,
0: नमी
1: तो नहीं आ रही है। तो इन सारी चीज़ों का हमको जो है ये करना चाहिए। अगर भंडार गृह के अंदर किसी प्रकार के छेद बने हुए हैं, बिल बने हुए हैं, तो उनको सीमेंट चूहों के बिल हैं या छेद बने हुए हैं जहाँ से लगातार हवा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे छेदों को, चूहे के बिलों को, इनको सबको जो है सीमेंट की उससे पूरी तरह से
0: बंद कर देना
1: चाहिए ताकि किसी प्रकार के जो है नुकसान ना रहे। मैं बता रहा था कि इसको पूरी तरह से जो है ये सीमेंट से इनको छित्रों को और उनको बंद करने के बाद पूरे भंडार गृह की जो है चूने से एक बार पुताई कर लें, और चूने से पुताई करने के बाद अगर संभव हो सके तो किसी कीटाणु नाशक जो है दवा का उपयोग करते हुए उसको जो है एक बार फ्यूमिगेट कर लें या उसका छिड़काव जो है भंडार गृह के अंदर कर दें। तो ऐसा करने से जो है
0: हानिकारक
1: कीटाणु जो भंडार गृह में अंडे हैं वो पहले से जो है नष्ट हो जाएंगे।
0: हाँ जी, हाँ, पनप नहीं पाएंगे।
1: तो ऐसी दशा में जो है हम जब अन्न का भंडारण करने वहाँ लेकर जाएंगे तो उसमें कीट पतंगे और से होने वाली हानि को हम रोक सकते हैं।
0: ये देखा जाता है कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो बोरे हैं अनाज के वो फर्श पर रख देते हैं, फर्श से नमी बोरों में आ सकती है, इसके लिए क्या करें?
1: निश्चित तौर पर जो है नमी जमीन से आती है और बोरों के माध्यम से अन्न के उनमें पहुंचती है, तो इसके लिए जो है हमारे किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि नीचे जो है लकड़ी के तख्ते अगर बिछा दिए जाएं
0: जी,
1: और उन तख्तों के ऊपर फिर बोरों की जो है स्टैकिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। और तख्तों के नीचे भी अगर ईंट लगाकर और फिर तख्ते रखे जाएं तो थोड़ी ऊंचाई आ जाएगी और उसमें जो है नमी मॉइस्चर जो है दानों के अंदर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है नमी से भंडारित अनाज को बचा सकते।
0: ये देखा जाता है कि कुछ नमी जो है दीवालों में जब सीलन आ जाती है तो उससे भी आती है, तो बोरों को
1: दीवालों से थोड़ा दूरी पर रखें
0: जी,
1: दीवाल से दूरी पर रखें बोरों को, लगभग जो है इस तरीके से स्टैकिंग करनी चाहिए कि दो लाइन जब हम लगा रहे हैं बोरों की वर्टिकल रूप से तो वो दीवाल से भी 3 फुट और उनके बीच में भी जो है 1.5 फिट की दूरी जो हो, ताकि हवा का प्रवाह लगातार बना रहे और हवा का प्रवाह होने की वजह से जो है वहाँ पर नमी को जो है रोका जा सकता है, दीवाल से जो लगने वाली नमी होगी उसको।
0: अच्छा गुरु, ये सब जो अनाज हम भंडारित कर रहे हैं तो बोरों में ज़्यादातर किसान भाई रखते हैं, भंडार गृह में फिर बोरे रखते हैं, आपने बताया कि

0: तो इन बोरों में कोई दवाई वगैरह डालनी है क्या, या ऐसा कोई देसी तरीका
1: हाँ,
0: हो?
1: अगर पुराने बोरे अगर हैं तो उन बोरों को पहले उपचारित भी किया जा सकता है, घोल बनाकर उनको उसमें उपचारित करके और
0: जैसे
1: धूप में
0: मेलाथियन है,
1: मैलाथियन वगैरह
0: मेलाथियन अपने ले लिया
1: है
0: मान
1: ना,
0: लो।
1: मैलाथियन के घोल में इनको डुबोकर और धूप में सुखा लें अच्छी तरह से, और सुखाने के पश्चात उसके बाद उन बोरों में जो है अन्न का भराव किया जा सकता है। और दूसरा जो है, जब हम स्टैकिंग करते हैं तो उस दौरान भी जो है मैलाथियन दवा का स्प्रे जो है उसमें भंडार गृह में किया जा सकता है।
0: यानी जिस घोल का छिड़काव हमें भंडार गृह में करना है, उसी घोल में उन बोरों को भी
1: बोरों को भी रखना है,
0: और भंडारण पात्रों पर भी छिड़काव के बाद
1: छिड़काव के बाद
0: बोरे
1: रखना
0: भी
1: है।
0: उसमें डुबो के बढ़िया से सुखा लें,
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: तो इससे हमारे बोरे भी कीटाणु रहित हो जाएंगे और भंडार गृह में जो भी हानिकारक कीट हैं वो भी
1: हाँ
0: सब
1: जी,
0: नष्ट हो जाएंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अब जैसे हमने भंडारित कर दिया, भंडारण जो पात्र हैं, भंडार गृह है, उसकी बढ़िया से सफाई कर ली, उसको हमने कीटाणु रहित कर लिया, बोरों को कर लिया, और नीचे नमी से बचाव के लिए पट्टियाँ वगैरह लगा दिए, दीवारों से हटा के भी रख दिया। अब जो भंडार गृह है हमारा, उसकी समय समय पर देखभाल जरूरी है
1: बिल्कुल समय समय
0: कि
1: पर।
0: जो भंडारित अनाज है कहीं किसी कारण से उसमें नमी या कोई तो नहीं आ रही है, तो समय समय पर देखभाल कितने दिनों के अंतराल पर करते रहना
1: निश्चित
0: चाहिए?
1: तौर पर जो है ये देखभाल होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इसकी देखभाल जो है अगर हम लगातार तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो है 2.5 से 3 महीने के अंदर एक बार जो है उनमें जाके जरूर निरीक्षण कर लें। और जैसे जो बरसात का जो मौसम है इसमें निश्चित तौर पर जो है लगातार एक निरीक्षण जो है 20-25 दिन के अंतराल पर जो
0: बहुत
1: है
0: आवश्यक है,
1: बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान वातावरण में नमी रहती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी
0: वो
1: अधिक
0: लगातार
1: रहती
0: रहती
1: है
0: है।
1: और लगातार बनी रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। तो ऐसे मौसम में जब हमको लग रहा है कि लगातार रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी हुई है, हवा में नमी है, तो ऐसे में फ्रिक्वेंटली 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर जो है एक बार करते रहें। बाकी जब ड्राई मौसम है तो आप थोड़ा उसका अंतराल बढ़ा भी सकते
0: जी,
1: हैं।
0: और कोई खास बात बताना चाहें?
1: बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें, एक तो कीटाणु मुक्त अनाज को जो है भंडार गृह में ले जाएं, भंडारित करने से पूर्व जो है भंडार गृह
0: अनाज
1: को
0: को साफ कर लें, अनाज को भी साफ कर लें।
1: अनाज को साफ कर लें और गर्मियों में जो है धूप में सुखा लें। नमी नहीं रहेगी तो अनाज में निश्चित तौर से जो है भंडारण के दौरान कीट पतंगों से उसको मुक्त रखा जा सकता है। और भंडार गृह के अंदर जब हम अनाज को लेके जा रहे हैं तो भंडार गृह पूरी तरह से जो है कीटाणु मुक्त हो, इस बात को सुनिश्चित कर लें और समय समय पर जो है उसका निरीक्षण करते रहें, ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी प्रकार का कोई जो है कीट व्याधि तो जो है भंडारित अनाज में नहीं आ रहा है। तो अगर इन सब बातों का को ध्यान में रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है हमारे किसान भाई जो है अनाज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित कर पाएंगे।
0: जी, तो श्री शैलेंद्र सिंह घुरैया, सहायक संचालक कृषि, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि वैज्ञानिक विधि से अनाज का भंडारण कैसे किया जाए, किन किन प्रमुख तकनीकी बातों पर ध्यान देना है किसान भाइयों को। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो भैया, अभी सुन रहे थे अपने भैया जी भेंट वार्ता, जाको विषय है तो वैज्ञानिक विधि से अनाज भंडारण, जाके वार्ताकार हते श्री शैलेंद्र सिंह घुरैया, और जिनसे बतिया रहे थे अपने भैया श्री SS चौधरी। तो भैया, हमें आशा है कि हमें भैया ने जैसे अच्छी जानकारी ली होगी।
3: हाँ, इतनी अच्छी सारगर्भित जानकारी भैया ने दी कि का तरीका से अपन को सुरक्षित अनाज को भंडारण करना है, का बात इनको ध्यान
2: ध्यान
3: रखना
2: रखना
3: है कि
2: है।
3: लंबे समय तक अपन जो अनाज है
2: सुरक्षित
3: रहे
2: रहे, सही कह रहे
3: और
2: हैं।
3: नुकसान नहीं हो। हम उम्मीद कर रहे थे कि जो बातचीत को लाभ है किसान भाई बहन जरूर
2: जरूर
3: लेंगे,
2: लेंगे। और का
3: और
2: बहन
3: जय के बाद में मीनाक्षी बहन, अब बताओ का विचार है, का सुनवा रही?
2: बहन देखो, हम अपने भैयन को मनोरंजन करवावे कुछ चाहते हैं कि उनको
3: मनोरंजन बहुत
2: मनोरंजन हो।
3: जरूरी है
2: और
3: जीवन
2: का
3: के
2: बहन,
3: लाने।
2: तो अपने भैयन के लाने लोकगीत सुना रहे हैं, जाके कलाकार हैं राजू पटेल और साथी।
3: ठीक है।

0: मनीषा बहन, देखो आपने बहुत अच्छे लोग सुनवाओ है, और हमारा भी यही कहना है कि भैया अपने मोड़ा मोड़ी इनको पढ़वे लिखवे के लाने स्कूल में जरूर
1: जरूर
0: भेजें।
1: सही,
0: अब नया सत्र शिक्षा को चालू हो व्यवहारो है, जो मोड़ा मोड़ी पढ़वे लिखवे से छूट गए हैं, या बीच में जिनको स्कूल छूट गया है, या जिनको नया दाखिलो दिलवाना है, तो देर नहीं करें
1: और
0: समय भी अपने मोड़ा मोड़ी इनको स्कूल भेजाएं। देखो अपनी सुविधा के लाने शासन ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि गांव-गांव में स्कूल खुलवा गए, कहीं दूर जावे की जरूरत नहीं है।
1: और है
0: छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी इनके लिए आंगनवाड़ी के पढ़ावे की व्यवस्था
1: करी है
0: बिल्कुल। छोटे छोटे होते हैं वो आंगनवाड़ी में बैठना सीख जाते हैं, पढ़ो लिखो खेल खेल में सीख जाते हैं। तो देखो भविष्य सवर जाते हैं अगर अपने मोड़ा मोड़ी पढ़ लिख लेते हैं। शिक्षा को अधिकार अपन को संविधान में मिलो है, और जाको उपयोग अपन और करना
1: चाहिए।
0: एक अच्छे माता पिता बन गए, एक अच्छे नागरिक बन गए, अपने मोड़ा मोड़ी इनकी शिक्षा दीक्षा पे जरूर ध्यान दें, और नए सत्र में अपने मोड़ा मोड़ी इनको स्कूल जरूर भेजें। कैसे कि देखो शिक्षा वो ज्यारा होते हैं जो अंधकार को मिटा देते हैं,
1: और
0: ऐसे धन होते हैं जो दिनों दिन बढ़त जाते हैं।
1: और
0: अपने समय जो बुरा आता है तो वहां में अपनी शिक्षा ही अपने और उनके काम आते हैं।
1: और
0: उनको समय को जो बात को ध्यान रखना है कि कोनो भी मोड़ा मोड़ी स्कूल जावे से नहीं छूटे। अपने संविधान में भी अपन को 14 साल की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी है, और देखो अपन और उनको स्कूल में मध्यान्ह भोजन मिल रहा है, गणवेश मिल रही है, और मोड़ा मोड़ी जो पढ़वे में होशियार है आते जाते हैं, तो इनके लाने साइकिल भी दी जा रही, जो आगे बढ़ रहे मोड़ा मोड़ी इनको स्कूटी भी दी जा रही है, हर तरह की सुविधा अपने स्कूलन में मोड़ा मोड़ी इनको मिल रही है। तो आपकी जिम्मेदारी बनत है कि आप अपने मोड़ा मोड़ी इनको रोज स्कूल भेजें, और स्कूल भेजवे के बाद अपने कर्तव्य की तीसरी नहीं समझें, बल्कि स्कूल में जाके इनको हालचाल भी लेते रहें। कभी का होता है कि मोड़ा मोड़ी स्कूल के नाम पे चले जाते हैं और स्कूल ही
1: नहीं पहुंचाते हैं
0: ना। जब सर अपन को कहते हैं कि भैया तुम्हारी मोड़ा मोड़ी तो स्कूल ही है, तब अपन को पता चला था कि मोड़ा मोड़ी तो स्कूल की कह के और पहुंचे
1: नहीं है।
0: तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, शिक्षा के महत्व को समझें, अपने मोड़ा मोड़ी को स्कूल भेजें। और देखो बहन, अब जय के सिंह बेरा हो गई है किसान वाणी से चलवे की, सो सगे भैया बहन का जय गीता बहन
1: और मनीषा बहन की राम राम जय जवान जय किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए अब प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत,

0: डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3540 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पे इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है। तो
1: जी
0: जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है, वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है, उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं। कोविड
1: जी
0: के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी,
1: जी
2: आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियाँ, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया
1: जी।
2: एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज़ 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज़ 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों
1: जी
2: को ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा
1: जी
2: जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, जो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना

0: फिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं, तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज़ दाखिले हो रहे हैं और उन सब का इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कवरेज या पहुँच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,00,000

0: 70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
1: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाए। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMJ जुड़ जाता है।
0: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जाँच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है, वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम आधुनिक पद्धति का भी हो
0: जी।
1: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो। इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
0: बिल्कुल एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: तो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जांपल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
1: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी

0: होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14% points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति

0: दी थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया. दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस. सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक.
1: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया. एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया. उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है. बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है. अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए. तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है. तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है. हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है. हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें. इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है. सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया. वेस्ट वाटर सर्वेलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं. काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है. और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं.
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं, तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए. तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं.
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है, उनको उपलब्ध किया जाता है. देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है. इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
0: जी.
1: किफायती दाम पे मिलती हैं. मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है. बहुत फायदा होता है. अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है. और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है. और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए. और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए, जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है. तो ये दो काम कर रहा है. एक तो गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है. व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते. इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है.
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है. डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए.
2: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल. नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष स्वास्थ्य सेवा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, हेलो ग्राम सभा। इसमें विषय होगा मानसून के आगमन पर बगीचे और उद्यानिकी फसलों के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वो 7 जून 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए। 7 जून 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। यह समय होता है समाचार संध्या का, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग

0: बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन

0: में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America,

0: بھارت اور وینیزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریکس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت پر توجہ مرکوز کی گئی. ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے. شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73rd مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلیٰ اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلیٰ کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے 8 وزرائے اعلیٰ کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصول یابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے.
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی. مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو. और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
0: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जाम निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एरिना ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, कीनिया और मलेशिया से आने वाले बैन अल-अक़वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मर्तबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से बहुत बुलंद करके एक इंतहाई तकनीकी और मुकाबला जाति खेलों का मुकाबला बना देती है, जिसका मकसद ओलंपिक तक रिसाई हासिल करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाति कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दुगने इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दीगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज भी जारी की। वजारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज इस साल की बजट जाति मुख्तस रकम के मुताबिक महसूलात के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मुसव्विदा जारी किया है, जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर एआई पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। ये मुसव्विदा एआई के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलात की इजाज़त देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, समाअत की तारीख, वजूहात की फहरिस्तों की तैयारी, कानूनी तहकीक, दस्तावेजात की खुलासा साजी, तर्जुमा और रस्मुलखत की मुंतकली। अलबत्ता इसमें यह भी कहा गया है कि अदालती निज़ाम से मुतालिक तमाम मामलात इंसानी अदालती कंट्रोल में ही रहेंगे। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और सड़क आमोदरफ्त और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मारुति सुजुकी की जानिब से तैयार भारत की पहली फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली मुसाफिर गाड़ी का इफ्तिताह किया। फ्लेक्स ईंधन से चलने वाली गाड़ियां इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से E20 से लेकर E100 की रेंज तक चल सकती हैं। इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिर गाड़ी के जुमरे में फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी की शमूलियत महज किसी प्रोडक्ट का इफ्तिताह नहीं है, बल्कि ये मुल्क में तवानाई की काया पलट के सिलसिले में एक नए बाब का आगाज है। जनाब पुरी ने कहा कि फ्लेक्स ईंधन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर इख्तियार करके इथेनॉल पर मबनी नकलो हरकत के असरात को खातिर खा हद तक बढ़ाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने इस इफ्तिताह को एक यादगार और पेशबीनी पर मबनी हुसूल याबी करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात का जिक्र किया कि ये संगे मील वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साफ, पायदार और खुद कफील नकलो हरकत के तसव्वुर से कतई मेल खाता है।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकने को कहा गया है। یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں چار ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی۔ ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے، جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے۔ کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا۔ چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے۔ ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں آئی آر سی اے ڈی انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کیں اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، کونکن، گوا، لکشدیپ، مدھیہ مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی، جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے۔ جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آرونتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21، 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے، جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے۔ بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلوگرام کے زمرے میں عالمی نمبر 1 کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے، جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ نیز توانائی، تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں۔ عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو۔
4: آپ سن رہے ہیں آکاشوانی مدھیہ پردیش کا پرسارن۔ इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम सोमनाथ अमृत महोत्सव, विकास और विरासत की गौरव यात्रा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में पिछले दिनों सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और भारत की शाश्वत आत्मा के पवित्र प्रतीक के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। दरअसल सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है। सोमनाथ की प्रत्येक ईंट भक्ति का ताप और भारत के पुनरुत्थान का गौरव कहती है। इतिहास में कई बार मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रत्येक विध्वंस के बाद ये मंदिर और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। आज सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और लेखक श्री कृष्ण मोहन झा जी। जैसा बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आकाशवाणी में।
6: जी धन्यवाद।
5: कार्यक्रम को शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनवाते हैं आपको।
7: साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सके। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांताए लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है।
5: जहां सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश को, देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है, इसे किस तरह देखते हैं?
6: देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि सोमनाथ, जो सोमनाथ केवल सोमनाथ कहने को नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण स्थान सोमनाथ का है
5: जी,
6: और जो सोमनाथ के साथ घटित हुआ, यदि हम बात करें 1026 में मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से वहाँ तोड़ फोड़ की और उसके बाद ये लगा कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी आप देखिए कि सोमनाथ का निर्माण हुआ, फिर से आप नए स्वरूप को प्राप्त किया, उसके बाद फिर आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने कई बार उसमें हमले किए और उसके बाद पुनर्निर्माण का क्रम समाज करता रहा है। तो यही वजह है कि जो मोदी जी ने कहा है कि ये जो हमारी विरासत है ये सुदृढ़ रही है और ये हमें सिखा रही है कैसे हमको जो है मजबूती के साथ खड़े होना है, कमजोर टूटना नहीं है, हम टूटते नहीं हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, ये उनके कहने का आशा है। स्वतंत्रता के बाद भी आप देखिए कि जब 1951 में, क्योंकि 75 साल पूरे हो रहे हैं, 11 मई 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी
8: जी।
6: तब से लेकर के 75 वर्ष हो गए और लगातार समृद्ध होता जा रहा है
8: जी।
6: और मंदिर का देखिए कि भव्यता लगातार बढ़ रही है और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री ने इतना सोचा हो, आपको ध्यान होगा कि महाकाल लोक के निर्माण किया उन्होंने
8: जी,
6: काशी को एक नया स्वरूप दिया उन्होंने, अयोध्या को देखिए कि अयोध्या का निर्माण और उसकी भव्यता किस ढंग से बढ़ी हुई है। तो आज ये पर्यटन के, यानी आप देखिए तीर्थ तो है ही हैं लेकिन साथ में एक पर्यटन के केंद्र भी बन चुके हैं, यहाँ पे जो है पर्यटन और तीर्थ दोनों का समावेश दिखाई दे रहा है। इससे एक तरफ तो रोजगार की बढ़ोतरी हो रही है, बहुत तरह तरह के रोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और जब विदेश से भी लोग यहाँ जब आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास किस ढंग से होता है। आपने अपनी आंख से ही देखा, जो कि हमारे देखते ही देखते उज्जैन के महाकाल की दशा दिशा किस ढंग से बदल गई, तो उसी ढंग से सोमनाथ को भी हम लेते हैं। क्योंकि जो पहला जो आपका जो प्रश्न है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि हम कहीं टूटने वालों में से नहीं है, हम मजबूती से खड़े होने वाले हैं, जब जब टूटे हैं तो उसके बाद हम ज्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं।
8: जी जी जी, प्रधानमंत्री ने जो अगला मेरा प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ ही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया, सोमनाथ को केवल एक भौतिक ढांचा मानकर उन्होंने उसे टकराते रहे, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। तो कहीं ना कहीं ये, जैसा कि आपने भी कहा कि ये आत्मबल, आत्मसम्मान और भारत के गौरव को दिखाता है।
6: देखिए निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद गजनवी ने जिस ढंग से हमारी धरोहरों को तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद यदि मैंने बाबरनामा पढ़ी तो बाबरनामा में बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को और इतिहास को मिटाने का कभी प्रयास नहीं करना, उनकी सीख थी। और यही वजह रही है कि जिस ढंग से ये जो हमारी संस्कृति रही है वो बच पाई, तो मुगलों ने उसमें बहुत कुछ, उनका योगदान भी उस ढंग से रहा तो वो किया। और जिस ढंग से समृद्धि हमारे पास जब से आज़ादी के बाद, और किसी देश के प्रधानमंत्री ने जब चिंता की खासतौर पर ज्योतिर्लिंगों को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो जिस ढंग से उनकी चिंता देखने को मिल रही है और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी विरासतों को किस ढंग से मिटाया गया
8: जी,
6: हमारी संस्कृति को कैसे, क्योंकि संस्कृत हमारी बहुत मजबूत थी, दूसरों के पास संस्कृति नहीं। एक बात बहुत अच्छी बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत साल पहले भाई महावीर से हमने एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश की का इतिहास नहीं है, जिस देश की संस्कृति नहीं है, वो आज संस्कृति बना रहे हैं, लेकिन हम अपने इतिहास को, हमारी संस्कृति को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं
8: जी।
6: तो यही उस प्रश्न का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब है कि हमारी संस्कृति तो थी, हमारा इतिहास तो था, लेकिन हमारे स्वर्णिम इतिहास को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। ये जो आयोजन हो रहा है 75वां वर्ष मनाया जा रहा है सोमनाथ जी का, कहीं ना कहीं इस बात का संदेश है कि युवा पीढ़ी जाने कि हम टूटने के बाद भी खड़े हो सकते हैं, किस ढंग से हम दासता को झेले हैं, गुलामियों को झेले हैं, और आज जाकर के हमको जब आज़ादी मिली है तो इस आज़ादी को हम किस ढंग से सुरक्षित रखें और पुराने वैभव को हम बना के रखें।
8: और ये सोमनाथ अमृत महोत्सव है जो आने वाले 1000 वर्षों तक जो है वो लोगों को प्रेरणा देता रहेगा, भारत की प्रेरणा बना रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।
6: देखिए निश्चित रूप से लाखों लाखों वर्ष तक, जब तक धरती रहेगी तब तक के सोमनाथ का जिक्र होगा, तब तक के काशी विश्वनाथ का जिक्र होगा, तब तक के आप ओंकारेश्वर का जिक्र होगा, जब तक महाकाल का जिक्र होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये छाप कभी छूटेंगी नहीं
8: जी,
6: ये हमारे संस्कारों से रची बसी है, हमारी संस्कृति से रची बसी है और हमारे दैनिक जीवन से रची बसी हुई है। तो इसका मिटना तो संभव ही नहीं है, लेकिन सुदृढ़ता बहुत जरूरी है। जिस ढंग से सुदृढ़ करने का प्रयास है, आज आप देख रहे हैं कि हर राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरा प्रयास किया है कि लोग जाकर के देख करके आए। यहाँ से भी आपने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्पेशल ट्रेन को रवाना किया,
8: मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन
6: योजना के तहत जो है यहाँ से हजारों की संख्या में लोग गए हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा है लोगों को दिखाने की, बताने की। जब तक कि लोग उससे साक्षात्कार नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या चीज़ है।
8: बिल्कुल सही बात है। मंदिर के इतिहास को अगर हम समकालीन भारत के साथ अगर जोड़ते हुए देखेंगे तो किस तरह से देखते हैं आप मंदिर का इतिहास समकालीन भारत के साथ?
6: देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये जो इतिहास था जी, बड़ा समृद्धशाली था। भारतीय लेखकों को तो छोड़िए, जो फारसी लेखकों ने लिखा है तो उन्होंने तो ये तक कहा है कि ये मंदिर सोने की चिड़ैया थी
8: जी।
6: वहाँ पे स्वर्ण को लेकर के उन्होंने कहा अत्यंत समृद्ध माना गया सोमनाथ का मंदिर
8: जी।
6: तो उन्होंने अपनी सब चीज़ों में कहा, तो समृद्धि तो बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि उसको लुटेरों ने लूटा है
8: जी,
6: कई बार लूटने का प्रयास किया और जितने बार लूटा उतने ही समृद्धि उस मंदिर की लौटती गई है
8: जी। जी,
6: तो मेरा यही कहना है कि जिस ढंग से आप, चूँकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा है कि जो मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत ही समृद्ध रहा है और हम यही बताना चाहते हैं इन 75 वर्षों के बाद युवाओं को कि किस ढंग से जो है उसका इतिहास रहा है, किस ढंग से स्नेह निर्माण कार्य हुआ है और आज एक गौरवशाली
8: जी
6: समृद्धता प्राप्त करी है उसने
8: जी। जहाँ साहब, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ मंदिर के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में ये जो अमृत महोत्सव आयोजित किया गया, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस तरह से ये पहुंचेगा?
6: ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो आपने कहा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में और ये जो आयोजन है
8: जी,
6: क्योंकि कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं कि जब आयोजन जब होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वृत्त प्रस्तुत किए जाते हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो प्रदर्शन बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगाई जाएंगी इतिहास से लेकर के आज तक की प्रदर्शनी होगी तो युवा पीढ़ी समझ पाएगा और उसका प्रचार प्रसार जिस ढंग से आज हम बैठ करके आज ही देख रहे हैं कि आज ये पूरे अखबारों में लगातार सोमनाथ को लेकर के है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा कि कितना समृद्ध आर्टिकल था, उसने कितनी भावुकता के साथ लिखा और लोगों से अपील भी की कि जाएं सोमनाथ जाएं और वहां पे करें
8: जी। और हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर अगर
6: सोमनाथ की

0: चर्चा कर रहे हैं।
1: तो जाहिर है कि पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और होनी भी चाहिए, जिससे नौजवान युवा सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, धर्म के बारे में जाने।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, जो आज का युवा है अब वो किताबों से हट चुका है
1: जी,
0: वो रील में विश्वास करता है। तो अब रील, क्योंकि अब जब वहाँ जाएंगे तो रील बनाएंगे
1: जी,
0: तो रील भी फ्लोट होगी
1: जी,
0: सोशल मीडिया में एक जो संचार जिस ढंग से होगा उसका जो जिस ढंग सर्कुलेट करेंगे तो वो गांव-गांव तक चीज़ें पहुँचेगी। तो सोमनाथ की जो कथा है वो अब वो जो युवा हैं वो खुद प्रस्तुत करेंगे, तो उनको खुद एक लगेगा जब वहाँ पे जब आप पहुँचते किसी चीज़ को आप जाकर के स्वयं देखते हैं, जो कि आपने खुद रिपोर्टिंग भी की है, जब किसी चीज़ को रिपोर्ट आप वहाँ पहुँच करके करते हैं तो बात अलग होती है, और कहीं सुन करके कोई बात करते हैं तो बात अलग होती है। तो कहीं ना कहीं जो करोड़ों की संख्या में जो वहाँ युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं, कई बुजुर्गों का सपना था वो सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से जो है एक मुक्ति प्राप्त होती है, और अपने जीवन काल में इसको करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है
1: जी।
0: तो उसी तरह से जो बुजुर्ग हैं उनके कहीं ना कहीं सपने रहे होंगे, वो पूरे होंगे, युवा जा करके देखेंगे, और कहीं ना कहीं इसका जो एक व्यापक प्रचार प्रसार आप आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, प्राइवेट चैनलों के माध्यम से निरंतर, अब देखिए सोमनाथ की स्टोरी लगातार आ रही है
1: जी,
0: सोमनाथ पे रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हुआ है
1: जी। जैसा शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखें कि जो युवा हैं, आज के युवा कुछ साल पहले तक उतने धार्मिक नहीं थे, उतने चेतन नहीं थे धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर, विरासतों को लेकर, लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि थोड़ा धार्मिक जितना होना चाहिए उतना है।
0: ये बहुत मार्मिक प्रश्न आपने कहा। 2014 में मैंने भी दो दिन पहले ही कहीं ये कोट किया था
1: जी,
0: कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात की
1: जी,
0: उन्होंने कहा शौचालय पहले फिर देवालय
1: जी।
0: जब आजादी के 70 साल बाद किसी देश के प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करनी पड़े तो देवालय की चिंता कैसे कर सकते हैं आप। पहले उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की
1: जी,
0: समग्र स्वच्छता की बात की, स्वच्छता अभियान चलाया, और उसके बाद देखिए सनेह सनेह उन्होंने चीजों को व्यवस्थित किया
1: जी।
0: उन्होंने एक बात और थी, मैं आज यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि विषय से विषयांतर जरूर होगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं को निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप लड़के को तो आप घूमने देते हैं पर लड़की लेट हो गई तो उसका हिसाब पूछते हैं
1: जी।
0: तो ये जो मैसेज उनका गया, और आज देखिए कि 2014 से हम आज 26 में बैठे हुए हैं, 12 साल का सफर है, इन 12 सालों में महिलाएं कितनी समृद्ध हुई। अभी हाल ही में आपने स्पेशल डिस्कशन भी किया महिला आरक्षण को लेकर के, जो बिल आया था उस पर भी आपने किया, तो पूरे देश ने देखा कि किस ढंग से मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के कार्य किया, और किसी भी परिवार में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो जो आप धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक पूजा पाठों में उनकी भूमिका रहती है, तो आप जो आपका जो प्रश्न था कि युवा क्योंकि आकर्षित हो रहा है, क्योंकि पूजा का क्रम और धार्मिक आयोजनों का क्रम लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि जो संचार माध्यम है कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि समाज को ये हतोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो समाज में एक अच्छी चेतना का जागरण भी इसके माध्यम से।
1: नए साल पे भी युवा जो है
0: पहाड़ों
1: पर समुन्द्र किनारे जाने के बजाय अयोध्या जा रहे हैं, काशी वाराणसी जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मंदिरों की ओर।
0: भाई आप देखिए पहले लोग ताजमहल और कुतुब मीनार देखने जाते थे
1: जी जी,
0: अब आज जो है वो मंदिरों में, हम खुद ही जानते हैं कि हमारे इतने सारे परिचित आते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत जाती है कि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए आज इतनी भीड़, लाखों की संख्या में नए वर्ष में जो है वो युवा आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, और हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता की तरफ से हम माननीय मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर थे, उनको जीवित कर दिया, आज उनको इस योग्य बना दिया कि लोग आज वहाँ पहुँच रहे हैं, और आज देखिए आज आप ही आपके परिचित कितने बोलते होंगे कि उज्जैन जाना है
1: जी,
0: तो आज आप हाथ खड़ा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था करना कठिन हो गया है
1: जी। सही बात है। अमृत महोत्सव की बात चल रही है, तो जो सोमनाथ अमृत महोत्सव है इससे सोमनाथ और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प को जहाँ साहब कैसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
0: देखिए बहुत अच्छा ये प्रश्न भी आपका है, जो कि धार्मिक पर्यटन जब होता है
1: जी,
0: तो जब बाहर से जब आदमी आता है, जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं
1: जी।
0: तो एक तो आने के लिए आपको पहले तो होटलों की व्यवस्था की जरूरत होगी वहाँ अच्छे से, क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: होटलों का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलेगा
1: जी।
0: फिर आपको वाहन का व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है
1: जी।
0: फिर धार्मिक पर्यटन के लिए जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो स्थानीय जो परिवहन है उसको लाभ मिलता है, गाइड को लाभ मिलता है, जो वहाँ का लोकल उत्पाद होता है

0: उसको एक दिशा दशा मिलती है। आप देखिए कई प्रोडक्ट ऐसे हुए जो लोकल से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गए, तो जो हस्तशिल्प है हमारा उसको एक अलग स्थान मिलेगा। प्रसाद का उद्योग है वो बढ़ोतरी हो रही है। जो छोटे व्यापारी हैं जो फूल नारियल और ये सब चीज़ें बेचते हैं, तो वो एक उसको भी एक अलग दिशा मिलेगी। अच्छा, गुजरात सरकार द्वारा इसको हेरिटेज टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है, तो ये जो सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया है।
1: और जाहिर बात है कि अगर जो धार्मिक पर्यटन से अगर हम इसको देखें जोड़कर, तो जब लोग आएंगे तो स्थानीय जो छोटे छोटे से दुकानदार हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनका भी फायदा होगा, जो होटल वालों का भी फायदा होगा। चौतरफा विकास पर्यटन के साथ, ये मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि ही कही जाए कि जहाँ जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वहाँ विकास चौतरफा हुआ है। सिर्फ मंदिर नहीं बनाए हैं, मंदिर के साथ साथ पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है,
0: चहुमुखी विकास हो रहा है। और देखिए आप दूर मत जाइए, आप तो यहाँ से हमने उज्जैन आपने खुद देखा होगा, कल और आज में आप अंतर महसूस करिए कि कल क्या था। आज आप चाह करके भी वहाँ पे होटलें पूरी फुल हैं, वहाँ पे रोजगार के नए नए सृजन होते जा रहे हैं, वहाँ का जो लोकल उत्पाद है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। तो यही स्थिति आपको सोमनाथ में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि लोकल उत्पाद अब जो है ग्लोबल होता जा रहा है। तो हमारी जो चीज़ें थी, तो अब बाहर का जब आदमी आकर के जब देख रहा है, चीज़ों को कर रहा है, तो वो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलने की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे ये इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहाँ पर अमृत महोत्सव के अवसर पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है सोमनाथ मंदिर जो अमृत महोत्सव है उस पर।
0: देखिए, किसी चीज़ को जीवंत रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए ये सब चीज़ें बरसों से चले आ रही है। और ये क्योंकि आप देखिए कि स्मारिका निकाली जाती है, डाक टिकट जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को बताता है। ये बरसों बरस तक, जैसे कि आपने कहा ना कि मोदी जी ने कहा कि हजारों वर्ष तक याद रहेगा, तो याद कैसे रखा जाएगा? तो ये डाक टिकट याद रखे जाएंगे, ये सिक्के याद रखे जाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो याद रखे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक इस चीज़ को चिरस्थायी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
1: जी जासर, सोमनाथ मंदिर की जो ऐतिहासिक यात्रा जो है 1026 से शुरू होती है, और आज हम सन 2026 में हैं, 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण भी हुए, और इन आक्रमणों और उनके पुनर्निर्माण के बाद जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, किस तरह भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ये प्रतीक बन सकता है?
0: देखिए, बहुत ही ये बात रही है कि मोदी जी ने इस बात को, जैसे आपने भी कहा कि किसी चीज़ के विकास के साथ साथ वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आप जब सोमनाथ जाएंगे तो गुजरात के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, सोमनाथ के कल्चर को वहाँ महसूस करेंगे, तो ये जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होंगी, जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे, कहीं ना कहीं ये हमारे मानस में स्थान बना चुके रहेंगे, मानस पटल पे वो शामिल हो चुके रहेंगे। तो ये जो करोड़ों की संख्या में युवा और बुजुर्ग जा रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसका असर वहाँ पे पड़ेगा। और आने वाले समय में, जैसे आप हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो धीरे धीरे सने सने एक एक ज्योतिर्लिंग पे काम होना शुरू हो चुका है, तो आने वाले समय में इसी तरह के जो आयोजन हैं वो अन्य जगहों पे भी होंगे, तो हमें लगता है कि हमारी जो विरासतें हैं वो और सुदृढ़ हो पाएंगे।
1: जी, 11 मई को जो समारोह के दौरान, जो अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ भव्य कुंभाभिषेक और महापूजा की, और देश की समृद्धि की, लोगों के कल्याण की कामना की।
0: देखिए, ये हमारी परंपरा है जी, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जब भी कभी सिंहस्थ होगा तो 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से वहाँ अभिषेक होगा, विधिवत सारे अखाड़ों के प्रमुख वहाँ मौजूद रहेंगे, शंकराचार्य वहाँ मौजूद रहेंगे, उसके बाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए कामना की जाती है। यही कार्य मोदी जी ने यहाँ किया, और यही वजह है कि जिस ढंग से आपने देखा कि 11 मई को चूंकि इसकी नींव रखी गई, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, चूंकि 11 मई 1951 में जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी इस ऐतिहासिक पल को वो किया था, उसको याद किया गया, और यही वजह थी कि मोदी जी ने 11 ज्योतिर्लिंगों के जल से अभिषेक करके ये

0: बारीकी का श्रीगणेश किया था
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अंतिम एक, जो आज के युवा हैं, और क्योंकि युवा पीढ़ी के केंद्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में हमेशा युवा पीढ़ी रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म को लेकर, विरासत को लेकर, सांस्कृतिक विरासत को लेकर, जो सोमनाथ, आप भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये अपील करेंगे कि वो भी सोमनाथ मंदिर जाएं, वहाँ की विरासत को देकर देखें, और किस तरह से इतने आक्रमणों के बाद भी मंदिर आज वहाँ खड़ा हुआ है और देश के गौरव की को बता रहा है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं आज के युवाओं से यही आग्रह करना करूँगा कि वो हमारी विरासत को, वो हमारे इतिहास को और वो हमारी संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास करें, क्योंकि भारत की बागडोर आने वाले समय में आपके हाथ में आने वाली है
1: जी।
0: आप इसको समझें कि इसकी महत्ता क्या है। बड़े संघर्षों से चीज़ें आज यहाँ खड़ी हुई है, इसको सहेजना और आगे लेकर के चलना आपकी जवाबदारी है। आप जरूर देखें और आपको ये सीख जरूर मिलेगी कि किस ढंग से कोई इमारत बार बार टूटने के बाद भी खड़ी होती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस बात को आत्मसात करने का ये अवसर होगा कि किस ढंग से गजनवी ने इसको बार बार तोड़ा, उसके बाद कई आक्रांताओं ने इसको तोड़ा, लेकिन आज भी सोमनाथ खड़ा हुआ है, सोमनाथ का मंदिर आज भी वही वैभव के साथ है। तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हैं कि यदि हम प्रयास करते रहें तो जीर्ण उद्धार लगातार होता है और हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं
1: जी। जाने से पहले एक बार फिर मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में 11 मई को जो शामिल हुए थे वहां पर क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
2: हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं, इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टिकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारक कृष्ण मोहन झा जी को, जो कि सोमनाथ अमृत महोत्सव पर उन्होंने विस्तार से वहाँ की विकास और विरासत की गौरव यात्रा पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और आकाशवाणी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देता हूँ कि आपने इस गंभीर विषय को समाहित किया और लोगों तक सोमनाथ के बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी अन्य विषय के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे पीएम मोदी के 12 साल सोमनाथ अमृत महोत्सव का सांस्कृतिक पुनः जागरण। ये कार्यक्रम आरएनयू भोपाल की प्रस्तुति थी।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashi Bhushan Jha on keyboard. She begins her rendition.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा.
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नूर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: विद दैट शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन ऑफ मैथिली फोक कॉम्पोजिशंस। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी दिल्ली। कॉन्टिन्यूइंग द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली, नाउ वी विल लिसन टू द प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी जयपुर ओडिशा।

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन। नमस्कार, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मानव तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाली आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथि, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास

0: से कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem.